0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தியறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ

0: नमस्कार, आज की सुबह कुछ अलग है। किसी घर में कलश स्थापित हो रहा है, कहीं मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं, तो कहीं माँ के जयकारों के साथ दिन की शुरुआत हो रही है। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। श्रोताओं, नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ व्रत और पूजा के नहीं होते, ये खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने के 9 मौके भी होते हैं। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं, जो अडिग संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। हर दिन माँ का एक नया रूप हमें ये याद दिलाता है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने और जगाने की देर है। तो क्यों ना इन 9 दिनों में हम भी एक छोटा सा संकल्प लें, किसी बुरी आदत को छोड़ने का या किसी अच्छी आदत को अपनाने का, क्योंकि जो संकल्प 9 दिन निभ जाएं, वे अक्सर जिंदगी भर का साथी बन जाते हैं। इसी आस्था और नई ऊर्जा के साथ समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना आरिकल। हेलो नीना।
1: Hello Vaishnavi, and you rightly said Navratri is not just a festival, it is also a time of eliminating our inner selves, from cleansing negativity to cultivating strength, wisdom and peace, where self-awareness is the highest form of worship. When you know yourself, you honor the divine present within you. Isn't it Vaishnavi?
2: Ji, bilkul.
1: So very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 11th of October 2026.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। इसमें 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है और आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की गई है, जो परिचालन दक्षता बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन के योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बा समुद्रम, परमकुड्डी और नमक्कल शामिल है।
3: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
1: External Affairs Minister S. Jaishankar chaired a conference of India's heads of mission in Africa in Addis Ababa yesterday. Speaking on the occasion, he said, India and Africa share deep linkages built upon global South solidarity, strategic autonomy, multipolarity and common development aspirations. The conference

0: came a day after Dr. Jaishankar laid out his vision for the India-Africa partnership in an address in the Ethiopian capital. On Friday, the minister said partnerships of the future must help create capabilities, not promote dependencies, and called for a reformed UN Security Council with fair representation for Africa. While speaking on the India-Africa partnership at the Adwa Memorial Museum in Addis Ababa,
1: उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। रेलवे ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया था।
0: In Saudi Arabia, attack on the international airport in Riyadh has killed 12 people and injured more than 300 others. The strike, which hit a domestic flight terminal complex yesterday, killed 4 Saudi citizens, 2 Bangladeshi nationals, and 1 citizen.

0: सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
1: आदिशक्ति माँ भगवती की आराधना, आस्था की अभिव्यक्ति और भारतीय संस्कृति की विविधता का उत्सव शारदीय नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो चुका है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन उत्सव में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री से लेकर देवी सिद्धदात्री तक देवी जगदम्बा का हर रूप अपने भीतर शक्ति और जीवन का एक अलग संदेश समेटे हुए हैं।
0: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
1: नवरात्रि का उल्लेख आते ही भारत की सांस्कृतिक विविधता भी सामने आती है। गुजरात में गरबा और डांडिया की थाप, पश्चिम बंगाल में भव्य दुर्गा पूजा और उत्तर भारत में प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन तथा दशहरी की परंपरा, उत्सव अलग अलग लेकिन भाव एक ही।

0: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुआ युद्ध अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। देवी की इसी शक्ति को नमन करते हुए कहा गया है कि
1: शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणी सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
0: नवरात्रि हमें संदेश देती है कि शक्ति केवल सामर्थ्य नहीं बल्कि साहस, विवेक, करुणा और आत्मविश्वास का भी परिचायक है। आइए इन पावन 9 दिनों में माँ दुर्गा का स्मरण करें और अपने भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा तथा नई आशा का संचार करें।
1: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्।
0: आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई। जय माता की।
1: जय।

0: प्रभावित रहने की संभावना है। पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस के अनुसार पंचकुइयां गोल चक्कर और झंडेवालन गोल चक्कर पर भी यातायात में बदलाव किए जाएंगे।
1: मूविंग ऑन टू चेन्नई नाउ, IIT Madras has invited applications for its two-year executive EMBA program for mid-career professionals. The blended program combines physical and virtual classes on alternate weekends with the 2027 batch commencing in January. The curriculum integrates business management with technology and innovation, offering exposure to economics of platforms, global business management, cybersecurity and its applications, business models and innovation, social media, internet marketing and emerging areas. The program aims to help professionals understand how technology is reshaping business models, markets, operations, customer engagement and competitive strategy. Some more from Chennai. On the 11th day of the NCC's ongoing All India Vayu Sainik Camp at Air Force Station Tambaram, Lieutenant General Virendra Vats, Director General National Cadet Corps, President over the felicitation ceremony, AIVSC 26, the national level camp of NCC Air Wing, which began on 30 September, will be held till 13th October 2026. The Director General was received by the camp commandant and was accorded a guard of honor.
0: और अब मुंबई की ओर रुख करते हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अहम खबर है। वांगांव स्टेशन पर मेगा ब्लॉक के कारण आज लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इससे डहाणू और विरार के बीच तथा चर्च गेट की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रभावित होंगी। रेलवे के अनुसार मेगा ब्लॉक के दौरान कुछ लोकल ट्रेनें रद्द हो रहेंगी जबकि कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी। कई ट्रेनों का परिचालन संशोधित समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। और महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे ने खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए ईट राइट अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस अभियान के अंतर्गत स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान श्री मुंडे ने कहा कि इस अभियान के जरिए लोगों को खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई जानकारी पढ़ने, भोजन को सुरक्षित तरीके से संभालने, खाने और सोच समझ कर खाद्य पदार्थ चुनने के बारे में जागरूक किया जाएगा।
1: That's a brilliant initiative about food because we are not very aware of certain things which are inside the packet. What are we eating?
2: जी, बिल्कुल।
1: Now moving on to Bengaluru. To clear the extra rush of passengers, Southwestern Railway will operate a one-way unreserved express special train from Bengaluru Central to Shakur Basti, train number 06262. Bengaluru Center to Shakur Basti one-way unreserved express special will depart from Bengaluru Central at 9:30 hours on 12th October 2026, Monday, and will reach Shakur Basti at 16:30 hours on 14th October 2026, Wednesday. En route, the train will stop at Udupi, Kundupara, Karwar, Madgaon, Tivim, Ratnagiri, Chiplun, Panvel, Kalyan, Nasik Road, Manmad, Busawal, Kandwa, Itarsi, Jabalpur, Katni, Satna, Chitrakoot Dham, Karvi, Banda, Virangana, Lakshmibai, Jhansi, Gwalior and Agra Cant stations.
0: और नीना, बेंगलुरु से अब आगे बढ़ते हैं, कोलकाता की तरफ चलते हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम GRSE ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे नई पीढ़ी के चार समुद्री गश्ती पोतों में से तीसरे पोत श्रेयस का कल जलावतरण किया। इस श्रृंखला के पहले पोत संघमित्रा को मई में और दूसरे पोत श्रुति का अगस्त में जलावतरण किया गया। इस तरह 5 महीने से भी कम समय में 3 पोतों का जलावतरण हो चुका है। करीब 113 मीटर लंबे ये आधुनिक पोत समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, समुद्री डकैती रोकने और खोज एवं बचाव अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: वैष्णवी, नाउ इट्स टाइम फॉर न्यूज़ फ्रॉम हैदराबाद। The Batukama Festival, Telangana's special festival of flowers, began yesterday with Engli Pula Batukama, a report.
3: The celebrations will continue for 9 days. Women make the Batukama.

अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। DMRC ने यह भी बताया कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। नीना, इससे मेट्रो से रोजाना जो लोग लाखों सफर करते हैं उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है और कहीं ना कहीं उनकी यात्रा पहले की तरह सामान्य हो सकेगी। और श्रोताओं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के मद्देनजर 20 अक्टूबर तक रानी झांसी रोड और आसपास के मार्गों पर यातायात प्रभावित

0: Sharma using colorful flowers like Tangedu, Gunugu and Marigold. The flowers are arranged in a tall dome-like shape. A small idol of goddess Gaurama made of turmeric is placed on the top. In the evening, women gather around the Batkamma. They sing folk songs and clap their hands as they dance in circles. At the end, the Batkamma is immersed in a pond or lake. Each of the 9 days has a different name. After Engilipula Batkamma on the first day, come Atkula, Mudapappu, Nanabiyam, Atla, Alina, Vepakayala Batkamma and Venamudra Batkamma. The festival ends on the last day with Sadhula Batkamma. A different food offering is made to the goddess each day. This festival worships nature. It stands for the unity of women and the rich culture of Telangana. Saptagiri, Akashwani News, Hyderabad.
1: और अब मौसम का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और अब रुक करते हैं कोलकाता का, जहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
2: Chennai is likely to see a partly cloudy sky. The temperatures are expected to range between minimum 27 degree and maximum 35 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience partly cloudy sky. The minimum temperature is expected to be 21 degree, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with haze. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 35 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला है कि अपने इतिहास के वो पन्ने को हम पलटें जिन पर आज की तारीख दर्ज है। और वहीं शुरुआत करें तो 1932 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में राजनीतिक अभियान के लिए पहला प्रसारण किया गया था।
2: In 1986, Mother Teresa escapes unhurt from a plane crash which killed six in Tanzania.
1: 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को पत्र लिखकर अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को तेजी से विकसित करने का आग्रह किया।
2: In 1999, Atal Bihari Vajpayee is appointed Prime Minister, two-tier ministry likely.
1: और 1968 में आज ही के दिन अमेरिका का पहला मानव युक्त अपोलो मिशन अपोलो 7 के प्रक्षेपण का कक्षा से पहली बार टेलीविजन प्रसारण किया गया। वहीं 1984 में अमेरिका के अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैथरीन डी सुलविन अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वे अंतरिक्ष शटल चैलेंजर पर सवार थी।
2: In 2001, Trinidad-born British writer Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul was awarded the Nobel Literature Prize for the year 2001.
1: और अब उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। सबसे पहले बात करते हैं गुलशन राय की। आज गुलशन राय की पुण्यतिथि है। वे एक ऐसे फिल्मकार थे जिनकी कल्पना ने हिंदी सिनेमा को नई धड़कन दी और जिनकी विरासत आज भी पर्दे पर गूंजती है। उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों का वितरण किया जिनमें से 40 ने सिल्वर जुबली मनाई। 1970 में उन्होंने फिल्म उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स की स्थापना की और पहली फिल्म जॉनी मेरा नाम बनाया, जो व्यावसायिक सफलता साबित हुई। गुलशन राय ने यश चोपड़ा के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्में निर्मित की, जैसे दीवार, कभी कभी, त्रिशूल और काला पत्थर। उनकी उपलब्धियों में पद्मश्री पुरस्कार और दीवार के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रमुख है। हिंदी सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य रहा क्योंकि उन्होंने वितरण से उत्पादन तक के क्षेत्र में उद्योग को मजबूत किया और सितारों व लेखकों के करियर को नई ऊंचाई दी।
2: Thich Nhat Hanh was a Vietnamese thin Buddhist monk, peace activist, prolific author, poet and teacher who founded the Plum Village tradition, historically recognized as a main inspiration for engaged Buddhism. Known as the father of mindfulness, Nhat Hanh was a major influence on Western practices of Buddhism. In the mid-1960s, Nhat Hanh co-founded the School of Youth for Social Services and created the Order of Interbeing. Nhat Hanh established dozens of monasteries and practice centers and spent many years living at Plum Village Monastery, which he founded in 1982 in southwest France. He coined the term engaged Buddhism in his book Vietnam Lotus in a Sea of Fire. Let's listen to his inspiring words.

0: tips on celebrating life.
1: And because you have eyes still in good condition, you only need to open them and then the beautiful cosmos is available to you. There is a paradise of forms and colors available in the here and the now. And you can get in touch because you have eyes still in good condition. And your eyes is only one of these conditions of happiness. You will discover thousands and thousands of conditions like that in your body and around you. Why do you have to wait in order to be happy? You can celebrate life. You can make happiness possible right now because the conditions of happiness are more than enough for you to enjoy.
2: गुजराती रंगमंच की सशक्त आवाज और हिंदी सिनेमा की यादगार अदाकारा दीना पाठक को आज उनके पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं। 1940 के दशक में रंगमंच से जुड़ी दीना पाठक ने अपने अभिनय के साथ साथ सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गुजराती लोकनाट्य शैली भव्य के जरिए भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। बाद में फिल्मों में उन्होंने गोलमाल में अपनी सहज अदाकारी से दर्शकों को खूब हंसाया, तो खूबसूरत और कोशिश जैसी फिल्मों में अपनी संजीदा अभिनय की छाप छोड़ी। 6 दशक से अधिक के अपने सफर में उन्होंने 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित दीना पाठक का योगदान भारतीय रंगमंच और सिनेमा की विरासत का अहम हिस्सा है।
0: From viral videos to Grammy glory, Cardi B has rewritten the rules of rap. Born in the Bronx, the hustle from reality TV on Love and Hip Hop New York to topping the Billboard Hot 100 with hits like Border Kielo, I Like It, and her collaboration with Maroon 5, Girls Like You. Known for her bold flow, candid lyrics, and unapologetic personality, Cardi B is more than a rapper. She is a cultural force recognized by Time as one of the world's most influential people. And now let's turn up the energy with the track Girls Like You. Next.

0: अब बात उस व्यक्तित्व की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और आजादी के बाद भी सत्ता से ज्यादा लोकतंत्र और जनशक्ति को महत्व दिया। आज ही के दिन 1902 में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1970 के दशक में उन्होंने भ्रष्टाचार, राजनीतिक दुरुपयोग और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ आवाज उठाई और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। मरणोपरांत वर्ष 1998 में जयप्रकाश नारायण को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था।
1: Born on 11 October 1984 at Alua in Ernakulam district of Kerala, Nivin Polly did his B.Tech degree in Electronics and Communication Engineering and was employed at Infosys Limited in Bangalore through campus placements and worked there as a software engineer from 2006 to 2008. Later, Nivin Polly applied for an audition and was selected to play one of the main roles in Vineet Srinivasan's directorial debut Malarwadi Arts Club in 2009. Which was produced by actor Dilip. Since then, it has been an incredible journey for him in the Malayalam and South film industry. With his relatable screen presence and powerful performance, Nivin Polly remains one of the most loved faces of South Indian cinema. Let's celebrate his journey with a track from one of his films, Bethlehem Kudumba Unit.

0: In supercomputing, where he led the development of Param supercomputers. He is a Padma Bhushan, Padma Shri, and Maharashtra Bhushan awardee. Indian computer magazine DataQuest placed him among the pioneers of India's IT industry.
1: भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में, जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे
2: कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि सीधे दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती है और जब आवाज हो अमिताभ बच्चन की तो संवाद खत्म होने के बाद भी उसका असर बरकरार रहता है आज के दिन 1942 को प्रयागराज में जन्मे अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई शुरुआती दौर में लंबे कद और भारी आवाज को लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा लेकिन आगे चलकर यही खूबियां उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों ने उन्हें एंग्री यंग मैन के रूप में पहचान दिलाई तो चुपके चुपके में उनकी कॉमेडी ब्लैक में उनका गंभीर अभिनय और पीकू में उनका सहज अंदाज बताता है कि अमिताभ बच्चन किसी एक किरदार या शैली तक सीमित नहीं है अभिनय के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज से भी कई गीतों को खास बनाया आइए आपको सुनाते हैं उनकी आवाज में गाए हुए कुछ गीत करते हैं
3: तुम होती तो कैसा होता तुम ये कहती तुम वो कहती तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं

0: चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अमिताभ बच्चन आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल हैं।
1: यस वैष्णवी, आइकॉनिक लेजेंडरी लीडर एंड एक्टर ऑफ आवर कंट्री एंड वी मिस यू सर इन आकाशवाणी बिकॉज वी नो दैट यू हैड कम हियर बट वी हैव यू एज एन आइकन फॉर आवर कंट्री टुडे। हैड यू बीन हियर मे बी वी वुड हैव मिस्ड द acting and you know everything that you have contributed for our country.
0: बिल्कुल नीना, और समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो श्रोताओं इसी के साथ आज सवेरे में आज की हमारी मुलाकात यहीं पूरी होती है। उम्मीद है आज की बातें आपके लिए जानकारी के साथ साथ कुछ अच्छे विचार और मुस्कुराने की वजह भी लेकर आई होगी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसे

0: सिर्फ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
3: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
5: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी

0: ग्रोथ के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड रेलवे इंडस्ट्रियल क्लस्टर एसईजेड लॉजिस्टिक हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
1: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
3: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनू, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मादोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ एकजुटता रणनीतिक स्वायत्त

0: स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu this afternoon. Pradhan Mantri Dhan Dhani Krishi Yojana completes 1 year today. Northern Railway says all train services to operate as per their normal schedule today. Navratri, 9-day-long festival to worship goddess Durga begins with religious fervour and gaiety. Saudi authorities say attack on Riyadh airport killed 12 people and wounded over 300. And in men's cricket, India to take on West Indies in third T20 international in Indore this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu today. The Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore.

0: பேச்சுலர் படத்திற்காக ஒலித்த குரல்கள். நவக்கரை நவீன் பிரபஞ்சம், ஏஎச் கஷீப். தொடரும் பாடலை கேட்கும் முன்,
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: நவராத்திரி இசை விழா நிகழ்ச்சியில் இதுவரை டாக்டர் ஆர் கணேஷ் அவர்களின் பாட்டு கேட்டோம். ஆர் சதீஷ்குமார் அவர்கள் வயலின், எஸ் பாலசங்கர் அவர்கள் மிருதங்கம், ஹெச் சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் கட்டம்.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
3: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी। और आज 11 तारीख है, 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
2: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कामना की है कि नवरात्रि का पर्व राष्ट्रीय एकता की भावना और देश की

प्रगति के संकल्प को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका व्यक्तित्व और संदेश पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान उनकी निर्भीक आवाज को याद किया। उन्होंने कहा कि वे सुशासन और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि 3 नवंबर को होने वाले मध्य अवधि चुनावों से पहले ईरान अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस जारी संघर्ष को जल्द ही खत्म कर सकता है। साउथ अमेरिका के शहर टेनेसी में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान इस सोच के साथ और कदम उठा सकता है, इससे अमेरिका को राजनीतिक नुकसान होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज के साथ तूफान और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी आज बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: religious fervor and gaiety. During Navratri, the nine forms of Goddess Durga are worshipped. On the first day, Devi Durga is worshipped as Ma Shailaputri, the daughter of the Himalayas, who represents strength, stability, and new beginnings. India strongly condemned the repeated attacks on Riyadh's King Khalid International Airport over the past few days, including the dastardly attack of yesterday, which have led to loss of lives, injuries and damage to property. In a statement, the Ministry of External Affairs expressed condolences to the families of deceased and wished for the speedy recovery of the injured persons. New Delhi said that repeated attacks on civilians and civilian infrastructure are completely unacceptable and must cease immediately. It added that India stands in solidarity with the people and the government of Saudi Arabia in defense of their sovereignty and hopes that peace and normalcy returns to the region at the earliest. India Meteorological Department, IMD, has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Similar weather conditions are expected over Andhra Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha and West Rajasthan during the same period. IMD also said that the hot and humid weather condition is likely at isolated places over coastal Karnataka, Konkan and Goa today. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 p.m. IST. The five-match series is level at 1-1 after West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 International in Ranchi on Friday evening. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने राजधानी दिल्ली की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था की चिंताओं को खारिज करते हुए इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुरक्षा की मांग करते हुए भारत और अफ्रीका को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। काला सागर में एक जहाज पर हुए हमले में बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से भारत के लिए रवाना। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR की चिंताएं निराधार हैं और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। एक रिपोर्ट।
2: जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संविधान द्वारा हक दिया गया है और सशक्त संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया द्वारा संरक्षित है। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि प्रत्येक लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
3: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
4: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की

0: स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। ये घटना यमन स्थित ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के हालिया अभियान के बाद सऊदी हवाई अड्डों, प्रमुख सैन्य ढांचे और तेल सुविधाओं को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में अचानक हुई वृद्धि का हिस्सा है। हूती विद्रोहियों ने इससे पहले हवाई अड्डे पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। एक रिपोर्ट।
2: काला सागर में सोमवार को जहाज MV रॉयद मम्मादोव पर हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। इस घटना में 2 विदेशी नाविकों की मौत हो गई थी। घायल भारतीयों को रोमानियाई अधिकारियों ने बचाया था और उनकी हालत स्थिर बताई गई थी। भारत ने इस हमले की निंदा की है और नाविकों की सुरक्षा के लिए खतरों पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने जारी संघर्षों को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर हमले से वैश्विक व्यापार और लोगों की जिंदगी को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास माउंटेन गार्जियन 2026 उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में जारी है। यह अभ्यास 5 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 18 अक्टूबर तक चलेगा। 14 दिन के इस अभ्यास में दोनों देशों के कुल 92 सैनिक भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व भैरव बटालियन के सैनिक कर रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की सेना के दल में माउंटेन इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग, आपसी विश्वास तथा पेशेवर संबंधों को सुदृढ़ बनाना है। पाकिस्तान में पिछले एक दशक में दर्ज ईश निंदा मामलों में रिकॉर्ड, आपराधिक कानून के अंतर्गत धार्मिक आरोपों से मानवीय जीवन पर खतरे को उजागर करता है। इस वर्ष ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ गई है। यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पूरे पाकिस्तान में ईसाई, हिंदू और अहमदी समुदायों के लिए खतरा कानून के बाहर काम करने वाले चरमपंथियों से कहीं अधिक व्यापक है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के ईश निंदा प्रावधानों का बार बार व्यक्तिगत दुश्मनी, संपत्ति विवाद और अन्य प्रकार की सामाजिक शत्रुता को निपटाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। साथ ही उन्होंने भी भरोसा जताया कि अमेरिका इस जारी संघर्ष को जल्द ही खत्म कर सकता है। दक्षिणी अमेरिका के शहर टेनेसी में एक राजनीतिक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान इस सोच के साथ और कदम उठा सकता है कि इससे अमेरिका को राजनीतिक नुकसान होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि फरवरी के आखिर में संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान के 159 जहाज डुबो दिए गए हैं। रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट रखने का सुझाव दिया। ये जलमार्ग संघर्ष का एक मुख्य केंद्र रहा है, जिससे तेल की ढुलाई में बाधा आई है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3 लाख टन से अधिक

0: जल की आपूर्ति करेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि के बाद अधिकारियों ने नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी जारी की है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और खेलों में भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की इस सीरीज में दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतकर फिलहाल बराबरी पर हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने राजधानी दिल्ली की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था की चिंताओं को खारिज करते हुए इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए भारत और अफ्रीका को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर बल दिया। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। काला सागर में एक जहाज पर हुए हमले में बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से भारत के लिए रवाना। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। फिलहाल दोनों टीमें श्रृंखला में एक एक की बराबरी पर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साइरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India rejects UN Human Rights Body's concerns over Delhi events, calls them interference in internal affairs. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for UN Security Council reforms and greater representation for India and Africa. Saudi authorities say attack on Riyadh airport killed 12 people and wounded over 300. 3 Indian nationals rescued from the Black Sea vessel attack have departed from Romania for India. And in men's cricket, India to take on West Indies in third T20 international in Indore this evening. And now the news in detail. India has said that the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR's concerns regarding yesterday's events in Delhi are misplaced and constitute an unwarranted interference in the internal affairs of the country. In a statement, the Permanent Mission of India in Geneva said that OHCHR should also devote attention to large-scale protests elsewhere, consistent with its mandate of impartiality and non-selectivity. It highlighted that India is the world's largest democracy, where the right to peaceful assembly is guaranteed by the Constitution and safeguarded by robust institutions, an independent judiciary, and a free media. It stressed that, as in every democracy, Indian citizens exercise this right, subject to reasonable restrictions in the interest of public order. It added that the authorities act in accordance with the law and courts remain available to all for redressal of any grievances. External Affairs Minister S. Jayashankar chaired a conference of India's heads of mission in Africa in Addis Ababa yesterday. Speaking on the occasion, he said, India and Africa share deep linkages built upon Global South solidarity, strategic autonomy, multipolarity, and common development aspirations. The conference came a day after Dr. Jayashankar laid out his vision for the India-Africa partnership in an address in the Ethiopian capital. On Friday, the minister said, partnerships of the future must help create capabilities, not promote dependencies, and called for a reformed UN Security Council with fair representation for Africa, while speaking on the India-Africa partnership at the Adwa Memorial Museum in Addis Ababa. In Saudi Arabia, attack on the international airport in Riyadh has killed 12 people and injured more than 300 others. The strike, which hit a domestic flight terminal complex yesterday, killed 4 Saudi citizens, 2 Bangladeshi nationals

0: சுகுமான ராகங்கள் கேட்டீர்கள். தொடர்பது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे. वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे. श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे. प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बास मुद्रम, परमकुड़ी और नमक्कल शामिल हैं. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है. इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी. इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है. दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है. सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है. पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं. मेट्रो स्टेशन पर इंटर चेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है. उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं.
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो. 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी. और आज 11 तारीख है, 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई.
1: भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है. जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए. मिशन ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और ये सशक्त संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया द्वारा संरक्षित है. भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं. इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी

दी है कि 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस संघर्ष को जल्द ही खत्म कर सकता है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தில்லானா மோகனாம்பாள் படத்திற்காக ஒலித்த குரல் பி. சுசீலா. தொடரும் பாடலை கேட்கும் முன்,
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?
4: ஓ

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली तेल शोधन संयंत्र में ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वे कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर नगर निगम, थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। गांधीनगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय 130 उम्मीदवार 11 वार्ड की 44 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi

0: கொல்கத்தா வெல்கம் தி அரைவல் ஆஃப் காடஸ் துர்கா வித் எ ஸ்பெக்டாகுலர் செலிப்ரேஷன் அட் ஈடன் கார்டன்ஸ் எஸ்டர்டே. தி ப்ரோக்ராம் உமா ஆகமோனி ஆர்கனைஸ்ட் பை தி வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் அண்ட் மஹாலய மார்க் த ஃபார்மல் பிகினிங் ஆஃப் திஸ் இயர்ஸ் துர்கா பூஜா ஃபெஸ்டிவிட்டீஸ். ஹியர் இஸ் எ ரிப்போர்ட் ஃப்ரம் அ கொல்கத்தா கரஸ்பாண்டன்ட்.
1: The beats of Durga Puja drums heralded the arrival of the festive season in Kolkata with the beginning of Devi Pakho. Chief Minister Shubhendu Adhikari formally inaugurated the Durga Puja festivities through the program featuring dance, music, a drone show and fireworks. The highlight was a record-setting gathering of 3,000 dhakis, earning the event a place in the Guinness World Records. A stunning drone display illuminated the sky with an image of goddess Durga as Mahishashuramurdini. Musical performances by Shantanu Maitra, Shan and the Dohar band added to the celebrations. Trundipan Dashutto, Akashvani News, Kolkata.
0: The India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Tuesday. Similar weather conditions are expected over Andhra Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha and West Rajasthan today. IMD has also said that hot and humid weather conditions is likely at isolated places over coastal Karnataka, Konkan and Goa for the day. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 PM Indian Standard Time. The five-match series is currently level at 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punnamalli Vada Palani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail Project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport, expresses concern over loss of lives and damage to property. Supreme Court directs authorities to prevent illegal detention of peaceful gatherers, ensure free movement of people and uninterrupted internet services. Nepal issues evacuation warnings along Buri Gandaki River after rising water sweep away houses in Gorkha district. And in men's cricket, India to take on West Indies in the third T20 International in Indore this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं. भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की. सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा. और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
3: 2014

0: के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
1: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए, अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
0: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
2: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
0: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेम चंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
3: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का एक एक नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
4: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
3: अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती

0: सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
1: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
2: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3,000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई के आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन को ऐतिहासिक अवसर बताया। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा को आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में सहायता करेंगी।
2: दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर तमिलनाडु। टुडेज प्रोग्राम इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट्स worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier, others will strengthen industry and trade. Together they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्हें पूर्व मुख्यमंत्रियों ओ पन्नीरसेल्वम, एडापड्डी के पलनीसामी और एम के स्टालिन के साथ भी काम करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि सरकारों में बदलाव के बावजूद तमिलनाडु के विकास और वहां के लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से इस यात्रा को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मंदिरों, वैज्ञानिक संस्थानों और मेट्रो रेल नेटवर्क का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को नवरात्र की बधाई भी दी। इससे पहले दिन में श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी हिस्से का उद्घाटन किया। हाल ही में आरंभ दूसरे चरण के कॉरिडोर के 4 अंग हैं। इसमें लगभग 15 किलोमीटर में फैले 11 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री इस समय तमिलनाडु के जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल

विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। सऊदी अरब ने बताया है कि किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है और 309 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2, अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन और सूडान का एक एक नागरिक है। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की कि क्षेत्र में शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल हो। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTJM नंबर 2 पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा के तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर हैं। उदयवीर सिद्धू ने मिस्र के काहिरा में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उदयवीर ने फाइनल में कुल 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: must not be obstructed from discharging their professional duties, issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of its directions. The Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused. Solicitor General Tushar Mehta informed the court that entry and exit had been restricted at only 45 out of 303 stations across the metro network on 10th of October. India has strongly rejected the remarks made by the Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, regarding recent events in New Delhi, terming them unwarranted and an unacceptable interference in the country's internal affairs. In a statement, the Ministry of External Affairs emphasized India guarantees the right to peaceful assembly under its constitution, backed by robust institutions, an independent judiciary, and a free media. India also highlighted the OHCHR's selective approach, pointing out that violent responses to the protests in India's neighbourhood and law enforcement actions in the UN body's own vicinity have gone uncommented. New Delhi strongly condemned the repeated attacks on Riyadh's King Khalid International Airport over the past few days, including the dastardly attack of yesterday, which have led to the loss of lives, injuries and damage to property. In a statement, the Ministry of External Affairs expressed condolences to the families of the deceased and wished for the speedy recovery of the injured persons. New Delhi said that repeated attacks on civilians and civilian infrastructure are completely unacceptable and must cease immediately. It added that India stands in solidarity with the people and the government of Saudi Arabia in defence of their sovereignty. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. The five-match series is currently level at 1-1. And that is the end of this news bulletin.
1: அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது. நேரம் 4:10. ஆகாஷ் வாணி.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: தேநீர் நேரம்.
3: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர். और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम. और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है. हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है. रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं. मैं हूं आपका कैलाश खेर.
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना. जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना. हर संकट का समाधान है भारतीय सेना. भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: 2,25,000 per month, plus allowances as per rules. Applications along with the prescribed resume, a two-page justification, a two-page vision statement, and details of at least two distinguished referees should reach the Ministry of Education by 31st October 2026 through registered or speed post. The detailed advertisement and application format is available on www.dohe-education.gov.in. The Department of Agriculture and Farmers Welfare has invited applications for two posts of Senior Agricultural Engineer, General Central Service Group A, Level 11, as per the 7 CPC, at the Farm Machinery Training and Testing Institutes. The posts will be filled on deputation, including short-term contract basis, from eligible officers of the central or state governments, union territory administrations, public sector undertakings, agricultural universities, recognized research institutions, councils, semi-government or autonomous bodies and statutory organizations. Detailed eligibility conditions and the prescribed application format and places of postings are available on the website. Applications in triplicate in the prescribed format with supporting documents should be forwarded through proper channel to the Under Secretary MNT, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhavan, New Delhi, within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up the website at www.agriwelfare.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के दो पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इस विषय में शैक्षिक अर्हता, अनुभव, वेतनमान, तैनाती का स्थान, आरक्षण आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र का 10 से 16 अक्टूबर 2026 का अंक। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, लेखा अधिकारी और सहायक। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.srfti.ac.in। प्रगत संगणन विकास केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। परियोजना प्रबंधक, प्रोग्राम मैनेजर, न्यूनतम 9 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वरिष्ठ परियोजना अभियंता, न्यूनतम 4 साल का अनुभव होना चाहिए। परियोजना अभियंता, इसके लिए नए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं और परियोजना सहभागी, इसके लिए भी नए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। परियोजना सहायक के पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं और इसके लिए एक या अधिक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। परियोजना तकनीशियन का पद भी रिक्त है और इसके लिए 4 साल या अधिक वर्षों का अनुभव होना चाहिए और परियोजना सपोर्ट स्टाफ की भी आवश्यकता है। ये गैर तकनीकी पद हैं और इनके लिए 3 वर्षों तक का अनुभव वांछित है। कार्यस्थल संपूर्ण भारत रह सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 है और विस्तृत आवेदन की शर्तों के लिए देखिए www.cdec.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष 1 पद और उप पुस्तकालय अध्यक्ष 1 पद। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के एक पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। विस्तृत रिक्ति परिपत्र नीति आयोग की इस वेबसाइट लिंक पर देखे जा सकते हैं www.niti.gov.in। राष्ट्रीय भारत

0: परिवर्तन संस्था सहायक कल्याण अधिकारी के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है और इसके लिए विस्तृत रिक्ति परिपत्र नीति आयोग के वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.niti.gov.in/work। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। ऐसे अत्यधिक प्रेरित और रिटायर हो चुके प्रोफेशनल्स भी, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार रहा हो, जिनमें अच्छी गुणवत्ता वाले अध्यापन और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता हो, उन्हें संस्थान के विभागों में आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है। विभाग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। विस्तृत जानकारी के लिए आप 10 से 16 अक्टूबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र देख सकते हैं और अन्य किसी स्पष्टीकरण के लिए ईमेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं registrar@nita.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 है। अब कुछ ही देर में हम सुनेंगे न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा को।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी पे बज गए हैं 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में रहेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास ये जानने क्या कुछ ले आए हैं आज हमारे लिए खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संक में मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
4: नमस्कार मुनीश, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन FM गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज।
0: जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति और नारी शक्ति की उपासना का 9 दिवसीय पर्व शारदीय नवरात्र आज से हो रहा है प्रारंभ।

0: दोस्तों, नवरात्रि वर्ष में दो बार मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के दौरान आती है और इसे कई हिंदू परंपराओं में नव वर्ष की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर में शरद ऋतु के आगमन पर मनाई जाती है। दोनों ही पर्व ऋतु परिवर्तन के समय आते हैं और माँ दुर्गा की आराधना, नई ऊर्जा तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश हमें देते हैं।
1: On the first day of Navratri, devotees worship Ma Shailputri, who symbolizes strength, determination and purity. Over the 9 days, devotees seek the blessings of the 9 forms of Goddess Durga, Ma Shailputri, Ma Brahmachari.

0: మా చంద్రఘంట, మా కుష్మాండ, మా స్కందమాత, మా కత్యాయిని, మా కాలరాత్రి, మా మహాగౌరి అండ్ మా సిద్ధిదాత్రి.
1: మందిరో మే గూంజతే హువే భజన్, ఘరో మే ప్రజ్వలిత జ్యోత్ ఔర్ గర్బా కీ థాప్, హర్ తరఫ్ భక్తి ఔర్ ఉల్లాస్ కా వాతావరణ రచేంగే. ఔర్ యే కిత్నా సుందర్ సంయోగ్ హై తన్వీ కి ఆజ్ అంతర్రాష్ట్రీయ బాలికా దివస్ భీ హై. मानो माँ दुर्गा का एक संदेश हो, जिस शक्ति को हम देवी के रूप में पूजते हैं, उसी शक्ति का सम्मान हर बेटी में भी हम करें.
0: Perhaps this is God's own way of reminding us that the true celebration of Shakti begins when every daughter receives the respect, safety and opportunity she deserves. We will discuss more on this in our Dateline section. Let's begin with the news headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punthamalli Vadapalani stretch of the phase 2 of Chennai Metro Rail project.
1: Pradhan Mantri ne aaj Chennai mein 13000 crore rupaye se adhik ki vikas pariyojanaon ka shilanyas kiya.
0: India condemns repeated attacks on Riyadh airport, expresses concern over loss of lives and damage to property.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
0: नेपाल इश्यूज इवैक्यूएशन वार्निंग्स अलोंग बुद्धि गंडकी रिवर आफ्टर राइजिंग वाटर्स स्वीप अवे हाउसेस इन गोरखा डिस्ट्रिक्ट.
1: और भारत तथा वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा.
0: And now time of our Dateline India, the segment that we always look forward to, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about International Day of the Girl Child.
1: दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है. घर घर में माँ शैलपुत्री की आराधना हो रही है. शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री. शक्ति की 9 दिवसीय यात्रा की शुरुआत ही एक बेटी से होती है. हम देवी के चरणों में शीश झुकाते हैं, कन्याओं के पैर पूजते हैं और उन्हें हलवा पूरी भी खिलाते हैं.
0: And look at the timing, Manish. The world is also celebrating International Day of the Girl Child today. Coincidence? Maybe. Or maybe the universe is winking at us.
1: बिल्कुल तन्वी, एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि आज 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हम आपसे एक खुद से एक सवाल भी पूछ सकते हैं. जिस बेटी में हम देवी का स्वरूप देखते हैं, क्या उसकी इच्छाओं, उसकी आवाज और उसके फैसलों का भी सम्मान करते हैं? नवरात्रि हमें नारी शक्ति का स्मरण कराती है, लेकिन इस शक्ति का सच्चा सम्मान तब होगा जब हर बेटी को अपनी पहचान बनाने और अपने सपनों को उड़ान देने का अवसर मिलेगा.
0: Absolutely, and hold that thought, because today is not only about celebrating girls, it is also about protecting their childhood, their choices and their right to shape their own future. The United Nations established this observance in 2011, and every year 11th of October reminds the world that a girl's future should never be decided simply by her gender.
1: Aur is varsh ka theme hai End child marriage and invest in girls' rights. यानि बाल विवाह समाप्त करें और बेटियों के अधिकारों में निवेश करें. यूनिसेफ के 2026 के आंकड़े हमें बताते हैं कि दुनिया में हर 5 में से लगभग एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है. आज जीवित लगभग 65 करोड़ महिलाएं और लड़कियां तो ऐसी हैं जिनका विवाह बचपन में ही हो गया. ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि उन अनगिनत सपनों की कहानी है जिन्हें समय से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर दिया गया.
0: And let me tell you all the listeners how fast this is happening. Not in every 10 minutes, not every minute. According to UNICEF, more than 12 million girls are married before turning 18 every year. And that is one girl every 3 seconds. That means by the time I finish this sentence, another childhood marriage may already be gone.
1: राजस्थान की एक लोक संस्कृति का एक मार्मिक लोकगीत है, छोटी सी उम्र परनाई रे बाबूसा. इसमें एक बेटी अपने पिता से सवाल करती है, जब आपने मुझे इतने वर्षों तक लाड़ प्यार से पाला पोसा, तो फिर इतनी छोटी सी उम्र में मुझे विवाह के बंधन में क्यों बांध रहे हैं? उसके शब्दों में पिता के प्रति प्रेम, बिछड़ने का दर्द और छिनते हुए बचपन की पीड़ा है.

0: ये गीत बाल विवाह की उस सच्चाई को हमारे सामने लाता है जहां एक बच्ची की आवाज सदियों पुरानी सोच पर सवाल उठाती है। आज हमारी बारी है उस सवाल का जवाब देने की। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में उम्मीद भी है। यूनिसेफ के मुताबिक पिछले 25 सालों में शिक्षा, कानूनी सुधारों और सामाजिक सुरक्षा के प्रयासों से दुनिया भर में लगभग 6,80,00,000 बाल विवाह रोके गए हैं। सोचिए कितनी बच्चियों को अपनी पढ़ाई पूरा करने, अपने पैरों पर खड़ा होने और अपनी पसंद का जीवन चुनने का अवसर मिला होगा। शक्ति की सच्ची आराधना तो तभी है जब हम हर बेटी को अपने सपनों को साकार करने की शक्ति दें और अवसर दें।
1: And India has a story that brings this change closer to home. In Odisha, the Advika program, launched as part of efforts to end child marriage, has reached around 2.5 million adolescents. UNICEF reported that more than 11,000 villages had been declared child marriage free, and approximately 950 child marriages were prevented in 2022 alone. These are reminders that education, community participation, and timely intervention can change a girl's future. India also has a legal framework in place for the education and safety of daughters. The Prohibition of Child Marriage Act 2006 provides for the prohibition of child marriage, while the POCSO Act 2012 protects children from sexual offences.
0: वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित करता है, लेकिन कानूनी रूप से प्रभावी होते हैं तब जब परिवार, विद्यालय, बहिष्कार और प्रशासन, ये सब समूह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
1: And India's journey towards girls' education began long before these laws. In 1848, Savitri Bhai Phule, along with Jyoti Rao Phule, helped establish a pioneering school for girls in Pune. She faced intense social opposition, yet continued her work. Her life reminds us that educating a girl has never been merely about opening a classroom door. It has also meant challenging the barriers standing in her way.
0: हमारी परंपरा में भी गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने ज्ञान और शास्त्रार्थ की परंपरा में अपनी पहचान बनाई। आधुनिक भारत में मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में, तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की दुनिया में और लाखों अन्य बेटियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी उपलब्धियां हमें बताती हैं कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं।
1: And let me highlight another fact that deserves our attention. UNICEF estimates that girls aged 15 to 19 are twice as likely as boys to be outside education, employment or training. In conflict-affected and fragile settings, girls are nearly 90% more likely to be out of secondary school than girls in stable settings. When classrooms become inaccessible and families lose their security, girls often face a greater risk of exploitation and early marriage.
0: अगर किसी बेटी की पढ़ने की इच्छा हो, लेकिन आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव या कम उम्र में शादी का डर उसकी राह को रोक रहा हो, तो क्या उसकी मदद करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। परिवार की सहमति, शिक्षक का सहयोग, पड़ोस की सजगता और सही समय पर प्रशासन की मदद किसी बच्ची का जीवन बदल सकते हैं।
1: Absolutely, and remember, Navratri teaches us that Shakti lives within every girl. So why worship the goddess in the temple and forget her in the classroom? When girls are safe, educated and empowered, they lift their families, communities and the whole nation. On this beautiful twin celebration, let's promise no girls' dreams will be cut short, not in our homes, not in our streets, not in our India.
0: Swami Vivekanand ne kaha tha, jaise pakshi sirf ek pankh se ud nahi sakta, waise hi samaj jab tak uncha nahi ud sakta, jab tak striyon ki dasha ko nahi sudhara jata. Ek bachcha, ek shikshak, ek kitab aur ek kalam, ye is puri duniya ko badal sakte hain. नवरात्रि दरअसल हमें शक्ति की आराधना सिखाती है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें उस शक्ति को पहचानना

और उसका सम्मान याद करना दिलाता है। आइए एक बार संकल्प केवल कन्या पूजन तक सीमित न रहे, ऐसा हम संकल्प लें। हम हर बेटी की पढ़ाई का साथ दें, उसकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं और उसके सपनों को किसी भी उम्र, परंपरा या भेदभाव की सीमा में कैद न होने दें। हमें गर्व है उस भारत पर जहां नदी को माँ कहा जाता है, धरती को माँ कहा जाता है और बेटी को लक्ष्मी कहते हैं। अब इस सम्मान को हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णयों में भी तो दिखाई देना चाहिए। माँ शैलपुत्री से यही प्रार्थना है, हर बेटी को सुरक्षित बचपन, शिक्षा का प्रकाश और अपने सपनों तक पहुंचने की शक्ति मिले। जय माता दी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का क्या कुछ है खास हमारे लिए आज उनके पास। कोलकाता में कल

0: और दोस्तों अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का क्या कुछ है खास हमारे लिए आज उनके पास। कोलकाता में कल ईडन गार्डन्स में शानदार जश्न के साथ देवी दुर्गा का स्वागत किया गया। महालया के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आयोजित उमा आगमन कार्यक्रम के साथ ही इस साल दुर्गा पूजा के उत्सवों की औपचारिक शुरुआत हुई। पेश है हमारे कोलकाता संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: The beats of Durga Puja drums heralded the arrival of the festive season in Kolkata with the beginning of Devi Pakho. Chief Minister Shubhendu Odhikari formally inaugurated the Durga Puja festivities through the program featuring dance, music, a drone show and fireworks. The highlight was a record-setting gathering of 3,000 dhakis, earning the event a place in the Guinness World Records. A stunning drone display illuminated the sky with an image of goddess Durga as Mahishashuramurdini. Musical performances by Shantanu Moitro, Shan and the Dohar band added to the celebrations. Tundipan Dashutto, Akashvani News, Kolkata.
2: And from West Bengal, let's move towards Andhra Pradesh. The Dashera Sharan Navratri celebrations commenced in Vijayawada today with great enthusiasm, transforming the city into a vibrant hub of spirituality and culture. We have a report.
3: The annual Sharan Navratri celebrations at the Sri Kanaka Durga Temple atop Indrakiladri Hills will be held from today until the 20th of this month. During the festivities, Goddess Kanaka Durga will appear before devotees in different traditional decorative forms. A large number of devotees from various parts of Andhra Pradesh and other regions are expected to visit the temple to seek the blessings of the presiding deity. President of India Draupadi Murmu is scheduled to visit Vijayawada on October 14th to offer prayers to Goddess Kanaka Durga. And Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu will offer silk garments to the deity on behalf of the state government on Friday, October 16th. Meanwhile, Vijayawada Utsav 2.0 also commenced today as part of the Dasara festivities. Arrangements have been made to organize a variety of cultural programs and competitions at several venues across the city, including Punnami Ghat and Makineni Basava Punnaya Stadium. Adding to the festive attractions, the national level Saras Mela will be organized at Punnami Ghat from October 13th to 31st. Women representing self-help groups from various states across the country will participate in the event, showcasing and selling their handmade handicrafts, handloom textiles, and traditional products. The Mela will offer visitors an opportunity to explore a diverse range of products reflecting the art, culture, and rural lifestyles of different regions of India under one roof. With the spiritual grandeur of the Sharan Navratri celebrations, the cultural extravaganza of Vijayawada Utsav 2.0, and vibrant display of traditional products at the National Saras Mela, Vijayawada is set to emerge as a major center of festive activity this Dasara season. Satyanarayana for Parikrama from Vijayawada.
0: दोस्तों हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य के जनजातीय जिला किन्नौर की संस्कृति भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है और जिले के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों पारंपरिक फुलाइच पर्व मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और देवी देवताओं से जुड़ी मान्यताएं आज भी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा है। जिले में इन्हीं पारंपरिक उत्सवों में फुलेच पर्व का भी विशेष महत्व है। फूलों का ये त्यौहार प्रकृति प्रेम, देव आस्था और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। फुलेच सामान्यतः शरद ऋतु के आगमन पर भाद्रपद मास की पांचवी तिथि को निचार उपमंडल के रूपी गांव से शुरू होता है और अश्विन मास की बीसवीं तिथि यानी फुलेच उत्सव सामान्यतः अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सितंबर अक्टूबर तक किन्नौर के विभिन्न गांवों में स्थानीय परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस उत्सव का संबंध पर्वतीय क्षेत्रों में खिलने वाले जंगली फूलों से है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार लोग ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से फूल एकत्रित कर गांव में लाते हैं और उन्हें अपने आराध्य देवता को अर्पित करते हैं। फूलों को देवता के चरणों में अर्पित करने की ये परंपरा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। किन्नौर की संस्कृति में स्थानीय देवी देवताओं का भी विशेष महत्व है। फुलेच के अवसर पर भी गांव की परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कुछ स्थानों पर देवरथ या पालकी की शोभा यात्रा भी आयोजित होती है। ग्रामीण अपने परिवार और पूरे गांव की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हैं। इस उत्सव की एक और खास विशेषता है यहां का लोक संगीत और लोक नृत्य। पारंपरिक वेशभूषा में सजे ग्रामीण जब लोकगीतों की मधुर धुनों पर सामूहिक नृत्य करते हैं तो पूरा वातावरण उत्साह और उल्लास से भर उठता है। किन्नौरी टोपी, ऊनी वस्त्र और पारंपरिक आभूषण इस उत्सव की सुंदरता को

0: Lena Bathurst acted in over 120 films in a career spanning over 6 decades. She is best known for her memorable roles in the Hindi films like Golmaal and Khoobsurat and others like Koshish, Umrao Jaan, Mirch Masala and Mohan Joshi Hazir Ho.
1: और आज ही है पुण्यतिथि एक ऐसे फिल्मकार की जिनकी कल्पना ने हिंदी सिनेमा को एक नई धड़कन दी और जिनकी विरासत आज भी पर्दे पर गूंजती है। हम बात कर रहे हैं गुलशन राय के बारे में, जिन्होंने 180 से अधिक फिल्मों का वितरण किया, जिनमें से 40 ने सिल्वर जुबली बनाई। 1970 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म की स्थापना की थी और पहली फिल्म बनाई थी जॉनी मेरा नाम, जो काफ़ी व्यावसायिक रूप से सफल साबित हुई। उनकी खास फिल्मों को हम याद करें तो दीवार, कभी कभी त्रिशूल और काला पत्थर की हमें याद आती है, और बहुत से पुरस्कार उनकी फिल्मों को मिले। आइए सुनते हैं एक गीत फिल्म काला पत्थर से।

और दोस्तों आज ही है जन्मदिन, जिन्हें कहा जाता है सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन। कविवर हरिवंश राय बच्चन के घर में पले बड़े अमिताभ बच्चन ने शब्दों की ताकत को पर्दे पर अपने अभिनय से एक नया अंदाज दिया। अपने शुरुआती दौर में काफी नाकामियों के बाद उन्हें सफलता जब मिली तो ऐसी मिली कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों ने उन्हें एंग्री यंग मैन के तौर पर पहचान दिलाई तो चुपके चुपके में उनकी कॉमेडी, ब्लैक में गंभीर अभिनय और पीकू में उनका सहज अंदाज हमें बताता है कि वो किसी एक किरदार या शैली से बंधे हुए नहीं है। अभिनय के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज से भी कई गीतों को खास बनाया है और उनके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें उनके चाहने वाले आज भी गुनगुनाते हैं और हम सुनते हैं कुछ ऐसे ही उनके संवाद और गीतों की ये झलक।

0: अजीब आदमी का नाम क्या हो सकता है?
1: विजय, एक सिगरेट जलाओगे मेरे लिए?
0: शो, तुमने मेरा नाम नहीं पूछा।
1: फायदा क्या है?

0: हमारे जैसी लड़कियां अपना नाम कपड़ों की तरह बदलती हैं।
1: हाँ, ये तो सच है और ये भी सच है कि आज पहली बार किसी अजनबी को बता रही हूं कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अनीता रखा था।
2: That's Amitabh Bachchan. Today is his birthday, an inspiration to all the young people, because even at the age of 87, he's working, he's fit, he has inspired a lot of people. And my favorite dialogue of Amitabh Bachchan out of all is, Mera naam hai Vijay Dinanath Chauhan.
3: Vijay Dinanath Chauhan. बिल्कुल बिना शर्त, ये उनका एक ऐसा यादगार संवाद है फिल्म अग्निपथ से
2: जी,
3: और जिसके रीमेक भी हुए दो बार, लेकिन वो बात तो शायद नहीं थी। और तन्वी, जैसा कि आपने याद दिलाया ही कि उनका ये संवाद और उनका ये जो अंदाज है कोई भी उस तरह से दोहरा नहीं सकता, और हम ये कामना करते हैं कि वो इसी तरह से हमें अपने चाहने वालों को हैरान करते रहें बराबर और सक्रिय बने रहें। तो दोस्तों, अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, दीजिए हमें आज्ञा।
2: नमस्कार।

0: தொடர்வது இந்தியல் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकुइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकुइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा

का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। किसानों की आय, गांवों में रोजगार और खाद्य सुरक्षा, सभी का संबंध कृषि क्षेत्र की प्रगति से है। लेकिन देश के सभी कृषि क्षेत्रों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कहीं सिंचाई की सुविधा सीमित है तो कहीं खेती की उत्पादकता कम है। कई क्षेत्रों में किसानों को कृषि ऋण प्राप्त करने और फसल कटने के बाद उपज के भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कृषि की संभावनाओं को पहचानना और जरूरत के अनुसार अलग अलग जिलों में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। इस योजना के तहत देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं को एक साथ जोड़कर स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम करने की व्यवस्था की गई है। आज के विश्लेषण में हम जानेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, पहले वर्ष में क्या प्रगति हुई है और विभिन्न जिलों में किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को किस तरह के अवसर मिल रहे हैं। आइए सुनते हैं पहली रिपोर्ट।
3: भारत में खेती की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। किसी जिले में सिंचाई की कमी बड़ी समस्या हो सकती है तो किसी दूसरे जिले में किसानों को अपनी उपज के भंडारण और बिक्री के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती। कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता कम है जबकि कई जगह किसानों के लिए कृषि ऋण प्राप्त करना भी चुनौती बना रहता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई। यह 6 वर्ष की पहल है जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 से हुई है। इसके अंतर्गत देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इन जिलों का चयन 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया गया है। इनमें कृषि उत्पादकता का कम होना, एक वर्ष में जमीन पर फसल उगाने की कम तीव्रता और कृषि ऋण का कम वितरण शामिल है। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुद्ध फसल क्षेत्र तथा खेती के लिए उपयोग में लाई जा रही जोतों की हिस्सेदारी को भी ध्यान में रखा गया है। हर राज्य से कम एक जिले को इस योजना में शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है, इसके तहत सिंचाई की सुविधाओं में सुधार, फसलों में विविधता को प्रोत्साहन, कृषि उपज के भंडारण की क्षमता बढ़ाने और किसानों तक ऋण की पहुंच बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। बेहतर प्रशासन और सरकारी सेवाओं की पहुंच भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्र योजनाओं को एक साथ जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि किसी जिले की कृषि संबंधी जरूरतों को पहचान कर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उनका समाधान करने का प्रयास किया जा सकता है। योजना को लागू करने के लिए 3 स्तरों पर व्यवस्था बनाई गई है।
2: खेती में सुधार के लिए योजनाएं बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि उनके परिणामों पर नियमित नजर रखी जाए। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों में प्रगति हो रही है और कहां अधिक प्रयास की जरूरत है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में जिला स्तर की कार्य योजनाओं और तय संकेतकों के माध्यम से इसी दिशा में काम किया जा रहा है। अब सुनते हैं विशेष रिपोर्ट।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के पहले वर्ष में

0: सभी 100 चयनित जिलों ने अपनी जिला कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं। ये योजनाएं अब लागू की जा रही हैं। योजना की निगरानी के लिए अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में एक विशेष डैशबोर्ड शुरू किया गया। नवंबर 2025 से उत्पादन और कार्यों से जुड़े संकेतकों के आधार पर जिलों की मासिक रैंकिंग भी शुरू हुई। इस व्यवस्था के माध्यम से जिलों में हो रहे काम की नियमित समीक्षा की जा रही है। योजना की प्रगति को मापने के लिए 36 योजना से जुड़े कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। इनमें 74 संकेतक काम के प्रत्यक्ष परिणामों और 47 संकेतक उनके व्यापक नतीजों से जुड़े हैं। अगस्त 2026 तक सभी 100 जिलों ने प्रत्यक्ष परिणामों से जुड़े संकेतकों के आंकड़े जमा कर दिए थे। सभी जिलों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए व्यापक परिणामों से जुड़े आंकड़े भी प्रस्तुत किए। केंद्रीय नोडल अधिकारी नियमित रूप से जिलों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। योजना के तहत 6 प्रमुख उद्देश्यों पर जिलों के प्रदर्शन को मापा जा रहा है। इनमें कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसलों में विविधता लाना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, फसल कटने के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार, कृषि ऋण की पहुंच बढ़ाना और सरकारी सेवाओं की व्यवस्था बेहतर बनाना शामिल है। फसल कटने के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाने का स्कोर 2.14 से 5.19 तक पहुंचा, जबकि सिंचाई से जुड़े उद्देश्य का स्कोर 1.38 से बढ़कर 4.91 हो गया। योजना के पहले वर्ष में किसानों के बीच अनुभव साझा करने के अवसर भी बनाए गए। दिसंबर 2025 में आयोजित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना FPO संगम में 15 राज्यों और योजना के 33 जिलों के 72 से अधिक किसान उत्पादक संगठन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कृषि उत्पादकता, बाजार तक पहुंच और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े अनुभव साझा किए गए।
1: किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केवल अधिक उत्पादन करना पर्याप्त नहीं है। फसल की गुणवत्ता बनाए रखना, उचित भंडारण करना, बेहतर बाजार तक पहुंच बनाना और पानी का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में किसान उत्पादक संगठन इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उदाहरणों के बारे में।
2: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के पहले वर्ष में अलग अलग जिलों से सामने आए उदाहरण बताते हैं कि कृषि विकास के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में देसाईगंज फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम का किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है। इस संगठन से 800 किसान जुड़े हैं। संगठन ने धान के प्रसंस्करण के लिए एक इकाई स्थापित की है, जिसकी क्षमता प्रति घंटे 3 टन धान प्रसंस्करण की है। इसके साथ 900 मीट्रिक टन क्षमता वाला गोदाम भी बनाया गया है। यह व्यवस्था संगठन की जय श्री राम नामक धान की किस्म के भंडारण और प्रसंस्करण में मदद करती है। इससे स्थानीय स्तर पर उपज का मूल्य बढ़ाने और किसानों को बेहतर कीमत दिलाने के अवसर मिलते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक के तुमकुरु जिले की। यहाँ टीप टूर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम का किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है। इससे 750 किसान जुड़े हुए हैं। यह संगठन खोपड़ा यानी सूखे नारियल की गिरी एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को उपलब्ध कराता है। इससे किसानों को बेहतर बाजार तक पहुँच बनाने और अपनी उपज के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह संगठन 2000 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM आधारित जोड़े की खेती भी करता है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को भी इन जिलों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR गतिविधियों के लिए अपनाने की व्यवस्था शामिल की गई है।
1: तो आज के विश्लेषण में हमने जाना कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। वर्ष 2025-26 से शुरू हुई इस 6 वर्षीय योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को जोड़कर कृषि उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण, कृषि ऋण और बेहतर सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले वर्ष में सभी 100 जिलों की कार्य योजनाएं तैयार हुई। तय संकेतकों पर जिलों के औसत स्कोर में सुधार दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान के उदाहरण बताते हैं कि प्रसंस्करण, बेहतर बाजार संपर्क और सिंचाई

0: सिंचाई के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन योजना की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन प्रयासों को कितनी निरंतरता से आगे बढ़ाया जाता है और किसानों को इनसे कितना लाभ मिलता है। कृषि क्षेत्र का विकास तभी व्यापक रूप ले सकता है जब उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भंडारण, बाजार और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी ध्यान दिया जाए। इसी के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। प्रस्तुति सहायक हैं मोहित सिंह। नमस्कार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचक जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री अद्य तमिलनाडु राज्ये 13,000 कोट्यधिकरूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शुभारंभम् अकरोत्। अत्रावसरे तेनोक्तं यत् इमाः परियोजनाः संपर्क व्यवस्थां वृत्तेः अवसरान् च जनयिष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् संप्रति संपूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्विष्यति। एतेषां समाधान प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा वर्तते। सर्वोच्च न्यायालयेन अधिकारिभ्यः शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैध निगडनं वारयितुं, सामान्यम् आवागमनं संचालितुं, निर्बाध अन्तर्जालं च सुनिश्चेतुं निर्दिष्टम्। नेपालस्य गोरखाजनपदे बूढी गण्डकी नद्यां जलवृद्धिकारणेन प्रभाविताः 50 जनाः समुद्धारिताः। अपि च भारत वेस्टइंडीज दलयोः तृतीया 20-20 स्पर्धा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। एतासु परियोजनासु मार्गरेल परिवहनं, पत्तन मूलभूत संरचना, पेट्रोलियम क्षेत्रम् अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति। अत्र 7,000,000,000 कोटि रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग कार्याणि, चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः, अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं रेलस्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमङ्गमस्ति। अत्रावसरे तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अपि उपस्थितः आसीत्। सभां संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा अयं दिवसः ऐतिहासिकावसरत्वेन वर्णितः।
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier, others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: Saha avochat yat etaihi padakramaihi samparka vyavastha sudridha bhavishyati. उद्योग व्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते, राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीय यात्रां संस्मरन् श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकार प्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्, यतः 1,000,000,000 वर्षस्य अक्टूबर मासे गुजरात राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथग्रहणात् आरभ्य प्रधानमन्त्रित्वपर्यन्तम् इयं यात्रा अविरतं प्रचलति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य प्रगतिः स्वकीयायाः समृद्धसांस्कृतिकन्यासात्, वैज्ञानिक उपलब्धिभ्यः, आधुनिकमूलभूतसंरचनायाश्च शक्तिं गृह्णाति। प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रास परिसरे सुधागोपालकृष्णन् मस्तिष्ककेन्द्रमपि राष्ट्राय समर्पितम्। इदं केन्द्रं शतसङ्ख्याधिकमानवमस्तिष्कानां कौशिकीय सूक्ष्मतायां त्रिआयामीय मानचित्रीकरणस्य युगान्तरकारी वैज्ञानिक प्रयासस्य भागः अस्ति, यत्र भ्रूणा

0: Good evening, listeners. Welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address fund-specific queries. To call us, you can connect on the numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। ख्याल रखें, हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: इन डोमेस्टिक बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस एंड ऑन मिक्स्ड नोट लास्ट वीक। Foreign portfolio investors sell equities worth over 45,000 crore rupees on stock exchanges, infuse more than 900 crore rupees through primary market in October so far. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings and geopolitical developments for Qs next week.
1: देश के सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते सोने और चांदी में मिला जुला रुख। अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने स्टॉक एक्सचेंज में 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचे। प्राथमिक बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया। और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर।

0: And before we begin with the program, here is a disclaimer. We once again want to remind our listeners that we do not address any specific fund-related queries. And besides that, the views given by the experts are of their own and not those of Akashvani. Akashvani does not endorse any of the views expressed by the experts present here.
1: और ख़बरों का सिलसिला शुरू करें हम पिछले हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख बना रहा एमसीएक्स में दिसंबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 0.7% बढ़कर 151,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ दिसंबर अनुबंध की चांदी मामूली गिरावट के साथ 225,755 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई कॉमेक्स में दिसंबर अनुबंध का सोना 1.3% बढ़कर $4,216.30 प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा दिसंबर अनुबंध की चांदी 1% बढ़कर $61.05 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई और हम अभी सोने और चांदी में तो उतार चढ़ाव देख ही रहे हैं शेयर बाजार का हाल भी हम देख रहे हैं आकार की कैसा चल रहा है और

0: श्योर नहीं है कि आपको जो टेन्योर है, जैसे एफडी में आपको टेन्योर एकदम गारंटीड तरीके से बताना पड़ता है कि 1 साल, 6 महीने, 15 महीने, और अगर आप उस तय किए समय से पहले बाहर पैसा निकालते हैं तो फिर वहाँ पर आपको पेनल्टी भी लग जाती है। वही चीज़ आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं होगी, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको एक गारंटेड रिटर्न चाहिए और आप समय के साथ एकदम पक्के हैं कि नहीं आपको 1 साल के बाद ही चाहिए, तो आप फिक्स डिपॉजिट का भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा सवाल था आपको गोल्ड को लेकर के। देखिए, गोल्ड में निवेश करना चाहिए और पोर्टफोलियो का कहीं हद तक इसको 10 से 15% आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा निवेश नहीं करिएगा। और मेरी समझ में गोल्ड में निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जाइए। फिजिकल गोल्ड में निवेश करने में जो 2-3 दिक्कतें रहती है वो ये रहती है कि सबसे पहले तो आपको उसको सिक्योरली रखने में दिक्कत रहेगी, एक सेफ लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप घर में रखते हैं तो एक वैसी चिंता रहेगी कि कभी कोई बाहर से आया है, कभी घर में काम हो रहा है तो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और बैंक में रखेंगे, लॉकर की सहायता लेंगे तो वहाँ पे एक आपको अलग एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। वहीं पे अगर आप इसको गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हैं, फिजिकल फॉर्म में, तो जब भी आप कभी इसको बेचने जाएंगे तो जो ज्वेलर है वो खरीद तो लेगा, लेकिन वहाँ पे मेकिंग चार्जेस के नाम पे बहुत सारे कुछ चीज़ें होती है, मेकिंग चार्जेस और दूसरे कहीं पे टाका लगाए, कुछ लगाए, काफ़ी डिडक्शंस हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रहेगा कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। और गोल्ड म्यूचुअल फंड एकदम नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, इसमें आप SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, केवल 500 रुपये महीने से भी कर सकते हैं, और ये एक फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ही ट्रैक करेगा। जो एक ETF होता है वो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ट्रैक करता है, और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड उस ETF में पैसे लगा सकता है।
1: जी, अगले कॉलर है जयपुर से दीपेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हाँ सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। मेरा जैसे सवाल है कि मैं 2 म्यूचुअल फंड हाउस का लार्ज कैप फंड देख रहा था, तो एक ने 58 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा और एक ने 28-30 स्टॉक करके रखा है, तो उसके बेस पे कोई सर मतलब है क्या कि कौन सा मतलब ठीक हो सकता है? कम स्टॉक है तो उसमें ज्यादा स्टॉक है तो लार्ज कैप फंड का
0: केवल इस वजह से कहना कि कौन सा फंड बढ़िया है, कौन सा कम अच्छा है, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ये मुमकिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेन चीज़ इसमें डिपेंड करती है कि वो स्टॉक्स का जो चुनाव है वो कैसा है, वो पोर्टफोलियो कैसा है। बट हाँ, जो चीज़ आप बता रहे हो उससे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि जो आपने बताया कि 28 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो, उसका एक पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे जो पूरे पैसों का रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में बटा हुआ है, ये फंड कंपैरेटिवली कम डाइवर्सिफाइड है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होएगा दूसरे फंड से। अगर इसके स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे चल पड़े, ज़्यादा जो फंड मैनेजर्स ने जिन स्टॉक्स का चुनाव किया है, अगर उन स्टॉक्स का चुनाव उनका ज़्यादा अच्छा चल पड़ा, तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पे अगर वो नहीं चले या उनमें से कोई से नीचे गया, तो वहाँ पे वो नीचे भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी कम है, ये एक फोकस्ड फंड है जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जिसने निवेश किया है।
1: और चलिए देखते हैं कि FPI का क्या रुख है इस महीने। अब तक अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाले। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 45,126 करोड़ रुपए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में बिकवाली के जरिए निकाले गए। वैश्विक अनिश्चितता, US बॉन्ड्स यील्ड्स में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्राथमिक बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने निवेश जारी रखा है। अक्टूबर में अब तक उन्होंने प्राथमिक बाजार में 960 करोड़ रुपए का निवेश किया। ऋण बाजार में इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों का रुख मिला जुला है। अक्टूबर में अब तक जनरल लिमिट रूट से 4,729 करोड़ रुपये डाले हैं, इसके उलट FAR से उन्होंने 1,921 करोड़ रुपये और VRR से 233 करोड़ रुपए निकाले हैं।
3: और हितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। हितेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग मार्केट मंत्री सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में क्या डिफरेंस है, और अगर मुझे अभी न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स के लिए, तो इनमें से कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूं? थैंक यू।

ऋषि, जो वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड है, ये दोनों एक अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है, मतलब ऐसे फंड्स हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो जो वैल्यू फंड है ये ज़्यादातर उन स्टॉक्स में निवेश करेगा जो कि उस फंड मैनेजर की समझ में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में मिल रहे हैं, जो कि जो फंड मैनेजर है जो स्टॉक्स का चुनाव कर रहे हैं उनको लगता है कि ये वाले स्टॉक्स की वैल्यू उनके अभी आज के मार्केट प्राइस से कहीं ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में वो बेहतर करेंगे। तो जैसे कोई चीज़ होती है ना, हमको लगता है कि अच्छी चीज़ और सस्ते में मिल रही है, तो एक तरीके से वैल्यू फंड का जो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है हम उस तरीके से कह सकते हैं। और वहीं पे जो कॉन्ट्रा फंड है वो थोड़ा सा जो मार्केट से एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जो अलग स्टॉक्स चल रहे होते हैं जो नॉर्मली बाकी के फंड्स इनमें नहीं करते, वो वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा के लिए मैं कहूँ

0: फंड है वो थोड़ा सा जो मार्केट से एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जो अलग स्टॉक्स चल रहे होते हैं जो नॉर्मली बाकी के फंड्स इनमें नहीं करते, वो वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा के लिए मैं कहूँगा कि देखिए, आप थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों में ही लगा सकते हैं। एक जो इक्विटी पोर्टफोलियो होता है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को भी डाइवर्सिफाई कर देते तो अच्छा रहता है। आप जो भी आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, जो आपका फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है, उसका टोटल जो पैसा है उसका कुछ 20-25% पैसे को आप इन दोनों में थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन लाना बेहतर रहेगा। कभी होता है कि एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलता है तो दूसरा नीचे रहता है, तो वहाँ पे आपके लिए रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा।
1: All right, let's turn our attention to the market regulator. SEBI is expected to issue guidelines on determining derivative settlement prices on expiry days within a week. Chairman Tuhin Kanta Pandey said the regulator is examining around 20,000 public comments received on its consultation paper on the closing auction session mechanism. The proposed changes aim to address concerns over the impact of closing prices on derivative settlement. Mr. Pandey said SEBI is also reviewing regulations governing depositories and participants to simplify compliance and strengthen fraud prevention. He added that changes to clearing arrangements for certain transactions, including share buybacks and tender offers, are targeted for implementation by the end of November. Meanwhile, SEBI is also working to simplify digital onboarding for overseas investors and strengthen cybersecurity, disaster recovery and business continuity across market infrastructure institutions. Mr. Pandey said guidelines on the responsible use of artificial intelligence and machine learning will be issued shortly, with safeguards including clear accountability, data controls and human oversight. Akar, we'd like to have your opinion on this. How do these guidelines, are they aiming to have more transparency and fairness in the derivative market?
0: Yeah, definitely. I mean, the government is, the regulators are trying to, make the things much better for the investors.
1: All right. जी.
2: और अभी एक कॉलर का सवाल मुझे याद आ गया और मुझे लगा कि शायद उस पर एक और चीज़ जोड़ दूँ मैं, जो एक साल के लिए निवेश की बात कर रहे थे कि एक 10 लाख रुपये अगर मुझे एक साल के लिए लगाने हैं, और आपने लास्ट में कहा कि FD, क्योंकि अभी बैंक रेट बढ़े हैं, अभी हालांकि वो देखते हैं हम ग्राहकों तक उसकी मतलब उसका असर पहुंचता कब है और कब हमें FD के बढ़े हुए रेट मिलते हैं, तब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम पैसे कहाँ रखें।
0: हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें जाएगा, क्योंकि अब आज की तारीख में जो टैक्स रेट है वो दोनों चीज़ों पे सेम है
2: जी।
0: FD का जो इंटरेस्ट है वो भी आपकी एनुअल इनकम में ही ऐड होकर टैक्स होता है, और जो लिक्विड फंड में जो आपके गेन्स होते हैं वो भी आपके एनुअल इनकम में रहता है, ऐड होकर लगता है। बट यहाँ पे जो एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक स्टेप ऊपर है, एक एडवांटेज पे है, वो ये है कि जैसे यहाँ तो केवल एक साल की बात थी, लेकिन अगर कहीं पे होता है कि आपका कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मनी है फिक्स्ड इनकम का, जैसे कि 2-3 साल का हो गया, वहाँ पे आपको हर साल टैक्स नहीं देना होगा। FD पे जो इंटरेस्ट है, भले ही आपको हर साल आपके अकाउंट में ना है, वो खाली अक्रू हो रहा है, मैच्योरिटी पे मिलेगा आपको, तब भी हर साल टैक्स देना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप बेचेंगे आपको केवल तभी गेंस पे टैक्स देना है।
2: तो ये फायदा तो है
0: जी
2: म्यूचुअल फंड्स में आने,
0: बिल्कुल वो कंपाउंडिंग आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और वहीं पे जैसे कि तब मैं उस वक्त बता रहा था कि आपको एक टाइम का कमिटमेंट नहीं देना पड़ता, जैसे कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि हमारे एक इमरजेंसी का पैसा है, कुछ लाख रुपए जो हमने रखे, लेकिन हमको एग्जैक्टली कब यूज़ करने हमको नहीं पता। अगर हम FD में निवेश करते हैं तो हमको एक टाइम कमिटमेंट देनी पड़ती है, ऐसे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अगर उससे पहले उनकी आवश्यकता पड़ती है उनको निकालते हैं तो इंटरेस्ट रेट पे एक पेनल्टी पड़ जाती है। बट म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी है, आप कभी भी उनको रिडीम कर सकते हैं।
2: थोड़ी अनिश्चितता है लेकिन उसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: आवर नेक्स्ट कॉलर जॉइंस अस फ्रॉम मुंबई। सोमनाथ जी, सवाल पूछें।
3: हेलो,

0: हेलो सर,
1: हाँ जी सोमनाथ जी सवाल पूछें।
0: अभी का मार्केट कंडीशन में
1: प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ योर रेडियो सेट सोमनाथ जी, आपकी आवाज एको कर रही है। जी बताएं।
0: हेलो
2: जी बताएं।
0: अभी का मार्केट कंडीशन में
2: जी लगता है उनकी लाइन पे कुछ गड़बड़ी है, कहीं कोई डिस्टरबेंस है, लेकिन हम इतना सुन पाए कि अभी के मार्केट कंडीशन में क्या होगा। और
3: तो सोमनाथ जी देखिए, आपका पूरा सवाल तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन अभी जितना मैं आपको बता पाऊंगा कि जो मुझे लगता है कि आप पूछना चाह रहे थे कि इस मार्केट कंडीशन में कहाँ निवेश करना चाहिए, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपके लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, मार्केट का जो सिचुएशन रहता है ये रोज़ बदलता है, हर थोड़े दिनों में बदलता है। शॉर्ट टर्म में ये कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। जो इक्विटीज़ है, जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसका नेचर ही ऐसा है कि ये स्थिर नहीं रहता, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो और ये हमारे एक आम आदमी के कंट्रोल में भी नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में एक निवेशक के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है, और उस हिसाब से हमारा निवेश प्लान करें। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि हमारे को वो पैसा कब चाहिए, हमारा जो गोल है, हमारा वो गोल क्या है, हमारे को कितने सालों में चाहिए, किस पर्पज़ के लिए हम लोग निवेश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए जो लॉन्ग टर्म का है, और उस पर हमारे को डटे रहना है, उस पर स्टिक होके रहना है। बीच में घबराना नहीं है जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए, और हर थोड़े समय में साल में एक दफ़ा उसको प्लान को रिव्यू भी कर लेना चाहिए कि क्या हमारे को इस प्लान में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कि जैसे अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे थे, अगर आप रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आपने जिन स्कीम्स में निवेश किया था, क्या वो स्कीम्स अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उन्हीं में पैसा कंटिन्यू करे या ना करे, या बदलने की ज़रूरत है।
1: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम महाराष्ट्र, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार।
4: मैम सर से मेरा एक क्वेश्चन है। अभी मेरे पास इंस्टॉलमेंट समझो 2 लाख का, मतलब किस फंड में मुझे जाना चाहिए? एक साल के लिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए है। तो उसमें कम से कम रिस्क हो और कुछ अच्छा रिटर्न मिले, तो कुछ ऐसे फंडों के बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू।
3: गुरुनाथ जी, जो आपने मेरे को अपना होराइज़न बताया 1 लाख का, सॉरी 1 साल का, और 2 लाख का, 2 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका एक होराइज़न है वो फिक्स्ड है, आपकी जो नीड है वो फिक्स्ड है कि आपको 1 साल के बाद इस पैसे की आवश्यकता होगी। देखिए, जब भी थोड़े समय के लिए पैसे लगाना हो ना, तो हमारी जो एक नीड होती है, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये रिटर्न हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो पैसा सिक्योर रहे, जिसको हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल बोलते हैं, और साथ ही में एक ठीक ठाक, मतलब जो एक इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न है वो मिल जाए, कि पैसा हमारा डिटोरिट भी ना हो। क्योंकि अगर आप किसी एक रिटर्न के लालच में किसी एक रिस्की असेट क्लास में जाएंगे, जैसे कि इक्विटीज़ हो गया, जो कि 1 साल के लिए नहीं एडवाइजेबल होता, तो वहाँ पे सबसे पहले रिस्क ये आ जाएगा कि 1 साल के बाद क्या वो पैसा उतना ही होएगा जितना आपने निवेश किया, और आप क्या उसको विड्रॉ कर पाएंगे। तो जब भी ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स होते, वहाँ पे बेहतर रहेगा कि आप फिक्स्ड इनकम में लगाए। और मेरी समझ में 1 साल के लिए तो आप FD में भी निवेश कर सकते हैं, अगर आपको एक गारंटीड रिटर्न चाहिए। और अगर आप तब भी किसी म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहेंगे, तो जैसे कि हम कुछ कॉल्स पहले बात कर रहे थे, आप एक अच्छे लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं।
1: All right, let's see what is the next big story of the day. The Reserve Bank of India has introduced fresh instructions on rupee derivatives to curb currency speculation and maintain an orderly foreign exchange market. The central bank has reduced the threshold for foreign exchange derivative transactions without underlying exposure from $100 million to $5 million across authorized dealers and recognized stock exchanges. Additionally, the RBI has introduced a foreign exchange risk reserve, requiring authorized dealers to maintain a cash reserve equivalent to 20% of the rupee value of qualifying derivatives.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा को आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से ये यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा है और क्षमता भी। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार चलाने और इंटरनेट सेवा को भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। भारत ने मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर बहुत चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवा समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और सांसद को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 300 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के भी हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी हैं। वेस्टइंडीज ने भारत के साथ इंदौर में तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहले ओवर में बगैर किसी नुकसान के 4 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए

0: रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से ये यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। भारत ने मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर बहुत चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया करने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद को तत्काल निलंबित करने की मांग की। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047 का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें भारत की कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता मौजूदा लगभग 220 मिलियन टन से बढ़ाकर 2047 तक 604 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति में इस्पात क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लौह अयस्क तथा कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की गई। वेस्टइंडीज ने भारत के साथ इंदौर में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में 5 विकेट पर 144 रन बना लिए थे। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stones for a series of development projects worth more than 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras in Chennai today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. These include national highway works worth around 3,700 crore rupees, initiatives at Chennai Port and the development of railway stations under the Amrit Bharat Station Scheme. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay was also present on the occasion.

திரை இசை பாடல் கேட்டீர்கள். தொடர்வது டெல்லி ஏஞ்சல்.

0: We now bring you program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर।
0: नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष और
1: मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार, जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा।
0: श्रोताओं, स्वर धरोहर के आज के इस एपिसोड में हम बात करें

0: देंगे उस कवि की जिसने हिंदी हास्य और व्यंग को घर घर तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काका हाथरसी की।
1: बिल्कुल आशुतोष, काका हाथरसी सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि हिंदी के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने चुटीले अंदाज से लोगों को हंसाया भी और लोगों को समाज के कई विषयों पर सोचने पर मजबूर भी किया।
2: एक छंद सुना रहा हूँ, इसमें मैंने ये बताया है कि कभी कभी मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं तो अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। एक बुढ़िया माई जा रही थी, ठोकर लगी गिर पड़ी, मेरी कविता बन गई। ठोकर खा बुढ़िया गिरी, ठोकर खा बुढ़िया गिरी, उठा न उससे जाए, पड़ी पड़ी वो सड़क पर, हाय हाय चिल्लाए, हाय हाय चिल्लाए। तभी एक लड़का आया सहज भाव से हाथ पकड़ कर उसे उठाया, तो बुढ़िया बोली, तूने आज उठाया मुझको, उसी तरह बेटा भगवान उठाए तुझको।
0: काका हाथरसी का असली नाम प्रभुलाल गर्ग था। उनका जन्म 18 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में हुआ था।
1: और मजेदार बात ये भी है कि उन्होंने अपने नाम के साथ हाथरसी जोड़ा ताकि लोग पहचान सके कि वो हाथरस से हैं। काका नाम उन्हें कैसे मिला, आइए सुनते हैं स्वयं काका हाथरसी के मुख से।
2: हमारे हाथरस में ड्रामा हुआ करते थे अग्रवाल समाज की ओर से, तो एक ड्रामा हमने तो खुद लिखा और हम मुझको विलेन का पार्ट उसमें, लड़कों ने कहा काका विलेन बन जाऊंगा, तो एक काका नाम का चौधरी उसमें विलेन बना। समाज विरोधी था वो, लड़के चंदा लेने आते तो मना कर देता था, चंदा वंदा हम कभी नहीं देते, लड़के कहते ये सुधार होगा वो सुधार होगा, हम कोई सुधार नहीं मांगते, कोई नहीं मानते। लड़कों ने कहा महाराज काका जी देखिए मृतक भोज बंद करना चाहते हैं, हम आपका समर्थन चाहिए। मैं कहता था मृतक भोज बंद क्यों करोगे, जैसे तैसे तो कोई मरे फिर भी हम भोजन करने नहीं जाए, तो ऐसे करके फटकार देते थे। बड़ा सफल प्रोग्राम हुआ मेरा। खैर सुबह मैं बाजार में घूमने निकला और काका जा रहा है। मैंने कहा भगवान जनता ने मुझे नाम दे दिया काका, फिर मैंने उसके साथ हाथरसी जोड़ लिया क्योंकि मैं हाथरस का रहने वाला हूँ।
0: श्रोताओं, कहते हैं ना कि महान इंसान की नींव बचपन में ही पड़ जाती है। काका हाथरसी का बचपन भी संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पिताजी का नाम शिवलाल गर्ग और माता का नाम बर्फी देवी था। उनके पिता का देहांत जल्दी हो गया था, ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। छोटी उम्र से ही वे अपने ननिहाल इगलास चले गए और वहीं पढ़ाई शुरू की।
1: गरीबी के कारण पढ़ाई के साथ साथ उन्हें चाट पकौड़ी तक बेचनी पड़ी। काका जी के पड़ोस में एक वकील साहब रहते थे जिनसे काका अंग्रेजी सीखने जाते थे। उन वकील साहब के भारी वजन को देखकर काका ने उन पर एक हास्य कविता लिख डाली, आइए सुनते हैं उस कविता की पंक्तियाँ।
2: मैंने हिंदी पढ़ी थी अपनी ननिहाल में इगलास में, उसके दोपहर बाद में एक वकील साहब से जो बहुत मोटे थे भारी भरकम, अंग्रेजी पढ़ने जाया करता था, उनको कविता लिखने का शौक शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, तो मैंने उनको एक छंद लिखा। उनका नाम था लक्ष्मीचंद वकील, बड़े प्रसिद्ध थे वहाँ, हमको शाम को पढ़ाते थे। तो मैंने लिखा उनकी बॉडी देखकर, एक पुलंदा बांध कर दी उस पर सील, खोला तो निकली वहां लक्ष्मीचंद वकील, वजन में इतने भारी, बैठ जाए तो पंचर हो जाती है लारी। जब कभी श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाए, जब श्रीमान ऊंट गाड़ी में जाए, पहिए चू चू करे ऊंट को मिल गया।
0: ये कविता वकील साहब के हाथ लग गई और नतीजा ये हुआ कि कविता के इनाम स्वरूप उन्हें पिटाई मिली। लेकिन सच कहें तो वही घटना काका की हास्य लेखन की असली शुरुआत थी।
1: किशोरावस्था में वो हाथरस लौटी और नौकरी की, पर वो ज्यादा दिनों तक टिक ना सकी। उन्होंने चित्रकला भी आजमाई, चित्रशाला भी खोली, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने संगीत नाम की पत्रिका शुरू की जो आज भी प्रकाशित हो रही है।
0: इन सारे उतार चढ़ाव के बीच एक चीज कभी नहीं रुकी और वो था उनका लेखन। कुछ समय बाद उनकी पहली कविता घुटा करती है मेरी हसरतें इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गुलदस्ता में छपी।
1: ये उनके लेखन सफर का पहला प्रकाशित काम माना जाता है। ये कविता ज्यादातर गंभीर और भावुक शैली की थी क्योंकि उस समय तक काका हास्य व्यंग के लिए मशहूर नहीं हुए थे। उन्होंने शुरुआत श्रृंगार और भावुक रस से ही की थी और बाद में धीरे धीरे उन्होंने हास्य और व्यंग को अपना मुख्य मार्ग चुना। आइए जानते हैं काका ने क्यों हास्य रस को अपनी कविता लिखने की शैली चुना।
2: एक महात्मा थे कर्णवास में, मैं गंगा जी पे रहता हूँ एक महीने, स्वामी जी थे निर्मलानंद जी महाराज। मैंने कहा महाराज एक

0: एक बात बता दीजिए मुझे। क्या भाई? बोलो। मैंने कहा पाप और पुण्य की परिभाषा बता दीजिए संक्षेप में। तो उन्होंने जब संक्षेप का नाम सुना तो बोले, किसी को रुलाना पाप और किसी को हंसाना पुण्य। हमारा बस मैंने हसरत को ही पकड़ लिया और हसरत में मुझे आगे चलकर सफलता मिलती चली गई बराबर।
1: श्रोताओं, काका हाथरसी की असली पहचान बनी कवि सम्मेलनों से। जैसे ही वे मंच पर आते, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती।
2: छंद छोड़ छल छंद बनाऊं, कविता काट अकविता गाऊं, फट जाए यह माइक ऐसा पावरफुल स्वर दे।
1: उनकी प्रस्तुति में हास्य भी होता था और गहरी सीख भी। लोग ठहाके लगाते लगाते सोच में पड़ जाते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सरल भाषा और हास्य का अनूठा अंदाज।
3: उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1957 में उन्हें लाल किले पर आयोजित कवि सम्मेलन में बुलाया गया। वहीं से उनकी पहचान पूरे देश में फैल गई। काका हाथरसी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए 1966 में ब्रज कला केंद्र, 1985 में पद्मश्री और 1989 में अमेरिका के बाल्टीमोर से ऑनररी सिटीजन का सम्मान प्राप्त हुआ।
1: जब काका जी को पद्मश्री मिला, उस समय उनके और कागी के बीच एक मजेदार वाक्य भी हुआ। जानना चाहते हैं तो आइए सुनते हैं।
0: सच बताता हूँ आपको, सुबह 8 बजे से लगभग 2 टेलीग्राम आए लंबे लंबे, एक राष्ट्रपति का एक गृह मंत्री का। मेरा बेटा नीचे से ऊपर कमरे में लेकर आया, लो काका पद्मश्री आ गई। पद्मश्री बहुत धन्यवाद बेटा भगवान को। सारे घर में चहल पहल, पद्मश्री मिल गई काका को, पद्मश्री मिल गई। और टेलीफोन खूब खटकने लगे बधाई के। काकी जरा सुस्त बैठ गई एक कोने में। न्या बेटा लच्छो लच्छो करा मेरे बेटे का, ये पद्मश्री कौन है? शंका हुई उसको कुछ, तो मेरी कविता बन गई। सुनिए, तार बधाई के मिले फोन करे टन टन, बज रही थी। तार बधाई के मिले फोन करे टन टन, पद्मश्री का नाम सुन काकी हो गई सन, सन्नाटे में आ गई। पद्मश्री का नाम सुन काकी हो गई सन, काकी हो गई सन, बड़ी चर्चा है जिसकी। क्या करती है काम, उम्र है कितनी उसकी? अमेरिका से यही सीख कर आई हो क्या? मेरे लिए सोच का तोहफा लाई हो क्या? और आगे कहने लगी, 80 साल हो रहे फिर भी ऐसे काम, 80 साल हो रहे फिर भी ऐसे काम, शर्म बुढ़ापे की करो होए नाम बदनाम, होए नाम बदनाम, चाल नहीं चलने दूंगी, भारतीय नारी हूँ दाल न गलने दूंगी, खबरदार जो मुझे छोड़ इत उसको ताका लूंगी दाढ़ी नोच, याद रखना ये काका। बड़ी मुश्किल से समझाई बेटो ने, कोई औरत नहीं है कहा कि ये तो अलंकरण मिला है काका।
3: काका जी की धर्मपत्नी जिनको काकी के नाम से जाना जाता है, वो किस प्रकार काका जी को प्रेरित करती थी, आइए जानते हैं।
0: हम दोनों का प्यार कायम है और उनसे मुझे प्रेरणा भी मिलती रहती है। हालांकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी प्रेरणा तो मिलती है। रोजाना मुझे सुबह या दोपहर को फूल भेंट करती हैं। तो एक बात बताऊं काकी की, एक कवि सम्मेलन हुआ हाथरस में, तो उसमें दो एक कवि आए थे आगरा के, आपने सुना होगा सोम ठाकुर, सोम ठाकुर गीत का। उन्होंने ब्रज भाषा के 2 छंद सुनाए, एक गीत सुनाया एक गजल सुनाई। काकी श्रोता में बैठी थी उस दिन, उससे कहने लगी फटकारने के स्वर में, हिंदी के कवि गजल लिख रहे हैं, तुम क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा गजल का मतलब समझती हो डार्लिंग क्या? मैंने कहा तुमने कभी गजक खाई है? गजक, गजक गुड़ और तिल से बनती है और गजल दिमाग और दिल से बनती है। हमने कहा गजल पेश कर रहे हैं, इसमें दिल तुम्हारा दिमाग हमारा।
1: काका हाथरसी ने सैकड़ों कविताएं लिखी, उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे, आई में आ गए, अमंगल आचरण, कॉलेज स्टूडेंट, नगर पालिका वर्णन, नाम रूप का भेद, जम और जमाई, दहेज की बारात, पिल्ला, हिंदी की दुर्दशा, भ्रष्टाचार, एयर कंडीशन नेता, खटमल, मच्छर युद्ध।
3: काका हाथरसी के मुख्य कविता संग्रह इस प्रकार हैं: काका की फुलझड़ियां, काका के प्रहसन, लूट नीति मंथन करी, खिलखिलाहट, काका तरंग, जय बोलो बेईमान की, यार सप्तक, काका के व्यंग्य बाण, काका के चुटकुले।
1: काका हाथरसी मानते थे कि हास्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। वो कहते थे हंसी इंसान की थकान मिटा देती है और व्यंग समाज को सुधार देती है। उनकी कविताएं भ्रष्टाचार, राजनीति और सामाजिक विसंगतियों पर सीधा प्रहार करती थी, मगर इतनी प्यारी शैली में कि कोई नाराज भी ना हो। काका जी ने अपनी कविता की शैली कहाँ से अपनाई, आइए सुनते हैं।
0: मैंने कहा ना गिरधर का।

0: राय के छंद मैंने लिए हैं, वो कुंडलिया छंद उनके होते थे बड़े अच्छे। इस छंद की विशेषता है कि बड़ा सरल छंद है, 24 मात्रिक छंद है, तो ये पहला और अंतिम शब्द मिलना चाहिए इसमें, तो शुद्ध कुंडलिया कुंडली छंद है, और जो पहला आखिरी नहीं मिला तो फिर वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो मेरे एक मित्र ने कहा इस पचड़िए में तुम मत पढ़ो, तुम तो छंद यही अपनाओ, वजन यही रहे, लेकिन इसको कुंडलिया छंद मत कहो। तो मैंने फिर इसका नाम रख दिया फुलझड़ियाँ, काका की फुलझड़ियाँ। धर्मयुग में छपी एक साल तक, एक स्तंभ बन गया, काका की फुलझड़ियाँ, काका की फुलझड़ियाँ। अच्छा, कुंडलिया छंद बता दूँ आपको क्या होता है। नैनीताल में गया था एक बार, तो मजदूर बिचारी फटेहाल बोझा ढो रही, आगे बढ़ी तो चमचमाती कार में कुत्ते का बेटा बैठा हुआ था। कुत्ते का बेटा जानते हैं आप? बिल्ला। मैंने कहा हे भगवान, इंसान की ये हालत, कुत्ते की ये हालत, तब ये छंद बना। देखिए शुद्ध कुंडलिया छंद है ये। पिल्ला, पिल्ला से शुरू होगा, पिल्ला पे खत्म होगा। पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिस का, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, मम्मी जी के हाथ दूध से रोटी खाता, रोज साबुन से नहाता, मम्मी जी के हाथ दूध से रोटी खाता। भावना बदली कवि की या इंसान की, कह काका वर मांगत हूँ मैं चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु बनाना हमको पिल्ला, पिल्ला बताना। ये कुंडलिया छंद, लेकिन मैंने इसका पालन बंधन में नहीं पड़ा, फिर मैंने अपने छंद लिखता रहा इसी शैली में, इतनी मात्र।
1: काका हाथरसी का जीवन हमेशा हास्य और हंसी से भरा रहा, और उनकी यही खासियत उनके आखिरी दिनों तक दिखी। अपनी मृत्यु के दिन भी काका ने किसी को रोने नहीं दिया। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनके जाने पर कोई रोए नहीं, बल्कि सभी हंसी के ठहाके लगाए। इसीलिए जब शमशान में उनकी चिता जली, तो वहां पर एक विशाल हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया।
2: काका हाथरसी ने हमें ये विश्वास दिलाया कि हंसी भी एक कला है और व्यंग भी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। काका हाथरसी हमेशा याद किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें हंसाया और सोचने का नया तरीका सिखाया। तो अब हमें यानी आशुतोष कुमार को और
1: श्वेता को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था श्वेता और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का और प्रस्तुति सहयोग था डिंपल का। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया विशाल ने। कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே முகேஷ் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज

0: की इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी

0: और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्व

0: विद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
1: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोयजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
2: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
3: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
2: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
4: वी लिव्ड एज अ नेशन,
5: हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
4: डीकॉलोनाइजेशन।
2: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है।

0: पांच लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN Rights Body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit Gorkha district of Nepal, 80 people rescued so far, 5 missing. An Indian shooter Uday Veer Sidhu wins the gold in men's 10-meter air pistol event at ISSF World Cup in Cairo. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure,

0: that coincidence could make us pause.
1: We worship Durga as Shakti, the embodiment of courage, strength, and limitless potential. And surely, the truest celebration of Shakti is to recognize and nurture it in the girls growing up amongst us.
0: We don't have to look far to see what becomes possible when girls are given opportunity, encouragement, and support. In the recently concluded Asian Games, the medals tally aptly demonstrates that opportunities open up pathways to spectacular success. Our women athletes have shown us that competing, excelling, and bringing laurels home is gender agnostic. Their achievements are more than medals. They are evidence of what investment in girls' potential can become.
1: So perhaps this Durga Puja, as we bow our heads before the goddess, we can make a simple commitment to the girls in our homes and communities to believe in their strength, invest in their dreams, and give their Shakti every opportunity to find its fullest expression.
0: And perhaps the most powerful change is this. A girl begins to see a future not as a favor someone might give her, but as a set of choices she is entitled to explore.
1: Her story becomes the story about what becomes possible when the world around her stops deciding the limits first. And she finds herself at the doorstep of her dreams.
2: In the National Program of Features, you were listening to a feature titled On the Doorstep of Dreams, scripted by Priya Malhotra, narration by Priya Malhotra and Nitish Arora, additional voicing Parvinder Kaur, Savigya, Vanshita, Nikhil Bhaskar, Shreya Shukla, and Hema Chandel. With audio inputs from Akashwani Patna, the feature was produced by Nitish Arora. This was a presentation of the Central English Feature Unit and came to you from the Delhi station of Akashwani. Please stand by for our next broadcast that follows shortly.
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है
4: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव यही आज के भारत की स्पिरिट है भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है
3: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की
4: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे बिकॉज दिस इज योर टाइम This is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा
3: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीकों की आलोचना की है भारत ने नई दिल्ली में कल

0: की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलअंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शन पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारिणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज से पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर्स विश्व खिताब हासिल किया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: Recalling his interactions with former Tamil Nadu chief ministers, the Prime Minister said that despite changes in governments, his commitment to the development of Tamil Nadu and the welfare of its people had remained unchanged. The Prime Minister cited Tamil Nadu's temples, scientific institutions and metro rail network as examples of how tradition and modern development can go hand in hand. The Prime Minister also extended Navaratri greetings to the people of the state. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Punamalli-Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi also attended the Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garodia Hindu Vidyalaya in Chennai today. Addressing the students, the Prime Minister said the world is looking for solutions to emerging challenges and expressed confidence that India's youth have the talent and potential to provide them. The Supreme Court today directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operating according to their normal schedule and

0: Internet services remain uninterrupted, subject to law and order requirements. The court said metro and train services should function normally in accordance with the prevailing law and order situation. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties, issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of its directions. The Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused. India Today called out the Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, for its double standards and approach of extreme selectivity when it comes to public positions, while rejecting the organization's remarks on yesterday's events in New Delhi. In a statement, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal described the OHCHR's remarks as unwarranted and unacceptable.
1: The OHCHR has an approach of extreme selectivity when it comes to public positions. Violent responses to protests in our neighborhood have gone uncommented, as indeed have law enforcement actions in its own vicinity. Such double standards only erode the credibility of its standing and contribute to the loss of faith in multilateralism.
0: The spokesperson highlighted that India is the world's largest democracy, where the right to peaceful assembly is guaranteed by the constitution and safeguarded by robust institutions. Nepal has been hit by flash floods once again as the Budhi Gandaki River swept Gorkha district in the VRs today, washing away settlements in Chumnobri rural municipality. Nepalese authorities have rescued more than 80 people so far, including 9 foreign nationals. 5 people still remain missing. The flood swept away houses and bridges and damaged several hydropower projects. India's Udaivir Sidhu clinched the gold medal in the men's 10-meter air pistol event at the International Shooting Sport Federation World Cup Rifle and Pistol in Cairo, Egypt today. And in cricket, India have set a target of 224 runs for the West Indies in the third T20 international at Holkar Stadium at Indore. Put into bat, India were all out for 223 runs in the allotted 20 overs. Abhishek Sharma played a superb 69 runs off 30 balls. In reply, West Indies were 123 for 4 in 13 overs when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा नई दिल्ली की घटनाओं पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया, इसे दोहरे मापदंड और आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर हमले की भारत ने निंदा की, एक भारतीय नागरिक की मौत और 10 अन्य घायल हो गए। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया, 5 लापता। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल लगाया, प्रांत के मुख्यमंत्री ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान की रिहाई के लिए मार्च निकाला। और भारतीय निशानेबाज उदयवीर सिद्धू ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर बहुत चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
1: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का

0: प्रयोग करते हैं।
1: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
2: सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में एक भारतीय की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। भारत ने इन हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने क्षेत्र में शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल होने की आशा व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद रियाद में भारतीय दूतावास सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हमले में घायल लोगों में 10 भारतीय भी शामिल हैं। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। दूतावास के अधिकारियों ने घायल भारतीयों की स्थिति जानने के लिए अस्पताल के अधिकारियों से भी संपर्क किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा में सट्टेबाजी को रोकने और विदेशी मुद्रा बाजार को सुचारू रूप से चलाने के लिए रुपए से जुड़े डेरिवेटिव्स पर कई नई पाबंदियां लगाई हैं। केंद्रीय बैंक ने अधिकृत डीलरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के लिए बिना हेजिंग या बिना अंडरलाइंग एक्सपोजर वाले विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स लेनदेन की सीमा को 10 करोड़ डॉलर से घटाकर 50 लाख डॉलर कर दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नए निर्देशों के अंतर्गत अधिकृत डीलरों को उन विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों को दोबारा बुक करने की अनुमति नहीं होगी जिनमें रुपया शामिल है और जिन्हें इन निर्देशों के जारी होने के बाद रद्द कर दिया गया था। हालांकि परिपक्वता पर अनुबंधों को रोल ओवर करने की अनुमति जारी रहेगी। रिजर्व बैंक ने अनुबंधित एक्सपोजर की हेजिंग करने वाले यूजर्स को ये पुष्टि करने का भी निर्देश दिया है कि उसी अंडरलाइन एक्सपोजर की हेजिंग किसी अन्य अधिकृत डीलर के साथ नहीं की गई हो। रिजर्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिजर्व शुरू किया है। इसके अंतर्गत अधिकृत डीलरों को 20 लाख डॉलर से अधिक मूल्य वाले उन योग्य डेरिवेटिव अनुबंधों के रुपए के मूल्य का 20% कैश रिजर्व के तौर पर रखना होगा जो रुपए के बदले विदेशी मुद्रा की खरीद से जुड़े करंट अकाउंट एक्सपोजर की हेजिंग करते हैं। अनुबंध खत्म होने तक ये रिजर्व रोजाना बनाए रखना होगा। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि कई लेन देन के जरिए इन जरूरतों से बचने की कोशिशों को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। डीजल आपूर्ति को लेकर अमेरिका और रूस के बीच कथित समझौते की खबरों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के प्रति ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन दोहराया है। समझौते की खबरों के बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में बर्नहम ने स्वीकार किया कि पिछले 24 घंटे यूक्रेन के लिए कठिन रहे हैं। दोनों नेताओं ने जल्दी ही मुलाकात कर बातचीत आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई। बर्नहम ने कहा कि ब्रिटेन रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को सख्त करता रहेगा। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की पर रूस के साथ शांति समझौता करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए यूक्रेन में नए राष्ट्रपति की मांग की है। उन्होंने अमरीका में डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए भी यूक्रेनी राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आपातकाल लागू कर दिया है। घोषणा के अनुसार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने का हवाला देते हुए आपातकाल के प्रावधान लागू कर दिए हैं। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया है। संघीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में विशेष बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये घटनाक्रम खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी के नेतृत्व में विरोध जुलूस के बीच हुआ है जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई और उनके लिए चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण

0: प्रसारण के अनुसार 4 हेलीकॉप्टरों की मदद से 82 लोगों को बचाया गया है। आज सुबह लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए तथा कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। बचाव और राहत कार्यों में नेपाली सेना के 171 जवानों सहित 700 से अधिक सुरक्षा कर्मी जुटे हैं। प्रारंभिक खबरों के अनुसार चुमनुबरी में लगभग 3 दर्जन घर बह गए और 45 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आपदा से 2 सस्पेंशन ब्रिज, 2 मोटर पुल और 3 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया है कि पर्यटक सुरक्षित हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन अभी बाकी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट पर 305 लोगों को ले जा रही नाव उलटने से 109 प्रवासियों की मौत हो गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बताया कि यह हादसा गुरुवार रात को तब हुआ जब नाव जिबूती से यमन जा रही थी। मृतकों में 52 पुरुष, 42 महिलाएं और 15 बच्चे हैं। 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया जबकि कम से कम 116 लोग अब भी लापता हैं। उदयवीर सिद्धू ने मिस्र के काहिरा में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 24 वर्षीय उदयवीर ने फाइनल में कुल 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। भारत ने वेस्टइंडीज को इंदौर में तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में 224 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 4 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय द्वारा नई दिल्ली की घटनाओं पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया। इसे दोहरे मापदंड और आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित। अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। और भारतीय निशानेबाज उदयवीर सिद्धू ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Reshma Tiwari with the world news. The headlines. India rejects UN Human Rights Body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. An Indian national killed and 10 others injured in Riyadh airport attack in Saudi Arabia. New Delhi condemns repeated attacks on Riyadh airport. Flash floods hit Gorkha district of Nepal. Over 80 people rescued so far, 5 missing. Indian shooter Udaivir Sidhu wins gold in men's 10-meter air pistol event at ISSF World Cup in Cairo. India today called out Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, for its double standards and approach of extreme selectivity when it comes to public positions, while rejecting the organization's remarks on yesterday's events in New Delhi. In a statement, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal described the OHCHR's remarks as unwarranted and unacceptable.
3: The OHCHR has an approach of extreme selectivity when it comes to public positions. Violent responses to protests in our neighborhood have gone uncommented, as indeed have law enforcement actions in its own vicinity. Such double standards only erode the credibility of its standing and contribute to the loss of faith in multilateralism.
2: The spokesperson highlighted that India is the world's largest democracy, where the right to peaceful assembly is guaranteed by the constitution and safeguarded by robust institutions. An Indian national injured in the attack on Riyadh's King Khalid International Airport in Saudi Arabia has died, taking the total death toll to 13. In a social media post, the Indian embassy in Riyadh said the injured Indian national succumbed to his injuries today. The embassy expressed its heartfelt condolences to the bereaved family and said it was in touch with them to provide all necessary assistance, including the early repatriation of the mortal

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा

0: Good evening, listeners. Welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To call us, you can connect on the numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. ख्याल रखें, हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: In domestic bullion market, gold and silver prices end on mixed note last week. Foreign portfolio investors sell equities worth over 45,000 crore rupees on stock exchanges, infuse more than 900 crore rupees through primary market in October so far. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings and geopolitical developments for Qs next week.
1: देश के सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते सोने और चांदी में मिला जुला रुख. अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने स्टॉक एक्सचेंज में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे. प्राथमिक बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया. और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर.
0: And before we begin with the program, here is a disclaimer. Once again, want to remind our listeners that we do not address any specific fund-related queries. And besides that, the views given by the experts are of their own and not those of Akashvani. Akashvani does not endorse any of the views expressed by the experts present here.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें हम. पिछले हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला रुख बना रहा. एमसीएक्स में दिसंबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 0.7% बढ़कर 151,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दिसंबर अनुबंध की चांदी मामूली गिरावट के साथ 2,25,755 रुपये

0: प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में दिसंबर अनुबंध का सोना 1.3% बढ़कर $4,216.30 प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 1% बढ़कर $61.05 प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई। और हम अभी सोने और चांदी में तो उतार चढ़ाव देख ही रहे हैं, शेयर बाज़ार का हाल भी हम देख रहे हैं आकर कि कैसा चल रहा है, और अंदाज़ा लगाना तो वैसे भी मुश्किल है, लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन हालात में अभी जो क्योंकि हमारे बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे कॉलर्स जो आते हैं, बहुत छोटी जगहों से आते हैं और छोटी रकम से शुरुआत कर रहे होते हैं, अभी म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में कदम रख रहे होते हैं, ऐसे लोग इन हालात में क्या करें? अभी जब काफ़ी हमें दिखता है कि काफ़ी ऊपर हो रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति में वो काफ़ी डर जाते हैं कई बार।
1: जी बिल्कुल, जब भी आपका एक हार्ड अर्न्ड मनी लगा होता है और मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ जब आप उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को नीचे जाते हुए देखते हैं तो डरना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन इस वक्त बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है कि जो निवेशक है वो घबराए नहीं, वो पैनिक ना हो, और साथ ही में ध्यान रखे असेट एलोकेशन का अपना, उनको अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पर डटे रहना है। और उनको ये चीज़ एकदम ध्यान में रखनी है कि भले ही अगर मार्केट अभी बीच में नीचे जा रही है, वोलेटिलिटी आ रही है, तो ये जो सारी फ्लक्चुएशंस है ये शॉर्ट टर्म में होती है। इक्विटी में पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है, 5 साल या उससे ज़्यादा सालों के लिए, और आमतौर पर देखा गया है कि जितना ज़्यादा सालों तक आप अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं तो वहाँ पे इन फ्लक्चुएशंस का जो असर है, जो वोलेटिलिटी का असर है, वो बहुत ही मामूली सा रह जाता है और आपको एक अच्छा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलता है एक नॉर्मल किसी भी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से। तो निवेशकों को इस वक्त जो करना चाहिए वो सबसे पहले तो है कि घबराए नहीं, डरे नहीं, और साथ में ये अच्छे से कंफर्म कर ले कि जो उनका पैसा इक्विटीज़ में निवेशित है, जो इन्वेस्ट करा हुआ है, वो उनका लॉन्ग टर्म मनी है जो उनको 5 साल तक नहीं चाहिए होगा। साथ ही में अपने असेट एलोकेशन का ध्यान रखें।
0: और जैसे आपने ये बताया कि चलिए बाज़ार में बने रहें, निवेशित रहें हम,
1: तो
0: जो पैसा हमने अभी इससे पहले लगा दिया है वो तो चलिए लगा रहने देंगे हम।
1: हाँ जी,
0: क्या इस समय हमें नया निवेश अपना जारी रखना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, निवेश जारी रखिए, बट वहाँ पे कभी हल्का सा भी इस हिसाब से निवेश ना करिए कि हाँ अभी मार्केट नीचे है और ऊपर जल्दी जाएगा और मैं जल्दी कुछ पैसे कमा लूँगा। लॉन्ग टर्म का जो आपका पैसा है जो आपको 5 साल के बाद चाहिए उसको ज़रूर निवेश करें। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा समय है अपना नया पैसा निवेश करने के लिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट जब नीचे जाता है तो आप सस्ते में खरीदते हैं।
2: So Akar, I've also been listening to you very carefully, and you know, risk, discipline, long-term wealth creation, there's lots that comes in the kitty of investment through mutual funds. We'll come back to this discussion. First, let's hear what our first caller has to ask from us. Keshav ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
3: Ji, namaskar, main ye puchna chahta hu sir se ki jaise ki hum mutual fund mein jankari nahi rakh pate, हम बैंक के आरडीओ में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा कोई तरीका है जो म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं, और एक साल के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड में जाना चाहें तो किस ढंग से जा सकेंगे? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें एक साथ। तो दूसरा सवाल ये है कि अगर हम गोल्ड खरीदते हैं और उसको खरीदने में तो आसानी होती है, गोल्ड को आसानी से सेल भी हो सकता है, होता है जो शॉप
1: किशोर जी, जो आपका पहला सवाल था कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए, देखिए म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं और अलग अलग समय के अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से स्कीम्स उसमें बनी हुई है। उसमें कहीं अराउंड 1500 ओपन एंड स्कीम्स है जो बनी हुई है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो आपकी ज़रूरत है, जो आपका एक गोल का होराइजन है, जितने समय के लिए आप पैसों का निवेश करना चाहते हो, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, आप उसके हिसाब से सही तरीके का म्यूचुअल फंड चुने। आपने बीच में मेंशन किया कि आप 1 साल के लिए पैसे निवेश करना चाहते हैं, 1 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल निवेश नहीं कीजिएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम से कम आपका होराइजन 5 साल का होना चाहिए। 1 साल के लिए मेरी समझ में एक लिक्विड फंड सही रहेगा। लिक्विड फंड एक तरीके का डेट फंड होता है।

0: जिसमें जो आपका पैसा है वो ज्यादातर ऐसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में या ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाया जाता है जिनकी मच्योरिटी केवल 91 डेज के अंदर होती है। इसमें आपको एक एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रुपया भी मिलेगा और इसमें वोलेटिलिटी भी कम रहेगी। और साथ ही में जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है डेट म्यूचुअल फंड के साथ, यहाँ पे आपको कोई एक समय पक्का नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे कुछ भी ऐसा है कि आप एकदम श्योर नहीं है कि आपको जो टेन्योर है, जैसे एफडी में आपको टेन्योर एकदम गारंटीड तरीके से बताना पड़ता है कि 1 साल, 6 महीने, 15 महीने, और अगर आप उस तय किए समय से पहले बाहर पैसा निकालते हैं तो फिर वहाँ पर आपको पेनल्टी भी लग जाती है। वही चीज़ आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं होगी, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको एक गारंटेड रिटर्न चाहिए और आप समय के साथ एकदम पक्के हैं कि नहीं आपको 1 साल के बाद ही चाहिए, तो आप फिक्स डिपॉजिट का भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा सवाल था आपको गोल्ड को लेकर के। देखिए, गोल्ड में निवेश करना चाहिए और पोर्टफोलियो का कहीं हद तक इसको आप 10 से 15% आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा निवेश नहीं करिएगा। और मेरी समझ में गोल्ड में निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जाइए। फिजिकल गोल्ड में निवेश करने में जो दो तीन दिक्कतें रहती है वो ये रहती है कि सबसे पहले तो आपको उसको सिक्योरली रखने में दिक्कत रहेगी, एक सेफ लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप घर में रखते हैं तो एक वैसी चिंता रहेगी कि कभी कोई बाहर से आया है, कभी घर में काम हो रहा है तो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और बैंक में रखेंगे, लॉकर की सहायता लेंगे तो वहाँ पे एक आपको अलग एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। वहीं पे अगर आप इसको गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हैं, फिजिकल फॉर्म में, तो जब भी आप कभी इसको बेचने जाएंगे तो जो ज्वेलर है वो खरीद तो लेगा लेकिन वहाँ पे मेकिंग चार्जेस के नाम पे बहुत सारे कुछ चीज़ें होती है, मेकिंग चार्जेस और दूसरे कहीं पे टाका लगाए, कुछ लगाए, काफ़ी डिडक्शंस हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रहेगा कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। और गोल्ड म्यूचुअल फंड एकदम नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, इसमें आप SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, केवल 500 रुपये महीने से भी कर सकते हैं। और ये एक फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ही ट्रैक करेगा, जो एक ETF होता है वो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ट्रैक करता है और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड उस ETF में पैसे लगा सकता है।
1: जी, अगले कॉलर है जयपुर से दीपेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हाँ सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। मेरा सवाल है कि मैं 2 म्यूचुअल फंड हाउस का लार्ज कैप फंड देख रहा था, तो एक ने 58 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा और एक ने 28-30 स्टॉक करके रखा है, तो उसके बेस पे कोई सर मतलब है क्या कि कौन सा मतलब ठीक हो सकता है? भाई कम स्टॉक है तो उसमें ज्यादा स्टॉक है तो लार्ज कैप फंड का
0: केवल इस वजह से कहना कि कौन सा फंड बढ़िया है, कौन सा कम अच्छा है, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ये मुमकिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेन चीज़ इसमें डिपेंड करती है कि वो स्टॉक्स का जो चुनाव है वो कैसा है, वो पोर्टफोलियो कैसा है। बट हाँ, जो चीज़ आप बता रहे हो उससे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि जो आपने बताया कि 28 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो, उसका एक पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पर जो पूरे पैसों का रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में बटा हुआ है, ये फंड कंपैरेटिवली कम डाइवर्सिफाइड है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होएगा दूसरे फंड से। अगर इसके स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे चल पड़े, ज़्यादा जो फंड मैनेजर्स ने जिन स्टॉक्स का चुनाव किया है, अगर उन स्टॉक्स का चुनाव उनका ज़्यादा अच्छा चल पड़ा, तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पे अगर वो नहीं चले या उनमें से कोई से नीचे गया तो वहाँ पे वो नीचे भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी कम है, ये एक फोकस्ड फंड है जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जिसने निवेश किया है।
1: और चलिए देखते हैं कि FPIs का क्या रुख है इस महीने। अब तक अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपये निकाले। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 45,126 करोड़ रुपये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में बिकवाली के जरिए निकाले गए। वैश्विक अनिश्चितता, US बॉन्ड्स यील्ड्स में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्राथमिक बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने निवेश जारी रखा है। अक्टूबर में अब तक उन्होंने प्राथमिक बाजार में 960 करोड़ रुपये का निवेश किया। ऋण बाजार में इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों का रुख मिला जुला है। अक्टूबर में अब तक जनरल लिमिट रूट से 4,729 करोड़ रुपए डाले हैं। इसके उलट FAR से उन्होंने

0: 1921 करोड़ रुपए और वीआरआर से 233 करोड़ रुपए निकाले हैं।
1: और हितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। हितेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग मार्केट मंत्री जी एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में क्या डिफरेंस है, और अगर मुझे अभी न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है फॉर नेक्स्ट 10-15 इयर्स के लिए, तो इनमें से कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूं? थैंक यू।
3: जो हितेश जी, जो वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड है, ये दोनों एक अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ है। मतलब ऐसे फंड्स हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो जो वैल्यू फंड है ये ज़्यादातर उन स्टॉक्स में निवेश करेगा जो कि उस फंड मैनेजर की समझ में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में मिल रहे हैं। जो कि जो फंड मैनेजर है जो स्टॉक्स का चुनाव कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये वाले स्टॉक्स की वैल्यू उनके अभी आज के मार्केट प्राइस से कहीं ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में वो बेहतर करेंगे। तो जैसे कोई चीज़ होती है ना, हमको लगता है कि अच्छी चीज़ है और सस्ते में मिल रही है, तो एक तरीके से वैल्यू फंड का जो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है हम उस तरीके से कह सकते हैं। और वहीं पे जो कॉन्ट्रा फंड है वो थोड़ा सा जो मार्केट से एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जो अलग स्टॉक्स चल रहे होते हैं जो नॉर्मली बाकी के फंड्स इनमें नहीं करते, वो वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा के लिए मैं कहूँगा कि देखिए, आप थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों में ही लगा सकते हैं। एक जो इक्विटी पोर्टफोलियो होता है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ को भी डाइवर्सिफाई कर देते तो अच्छा रहता है। आप जो भी आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, जो आपका फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है, उसका टोटल जो पैसा है उसका कुछ 20-25% पैसे को आप इन दोनों में थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन लाना बेहतर रहेगा। कभी होता है कि एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलता है तो दूसरा नीचे रहता है, तो वहाँ पे आपके लिए रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा।
1: All right, let's turn our attention to the market regulator. SEBI is expected to issue guidelines on determining derivative settlement prices on expiry days within a week. Chairman Tuhin Kanta Pandey said the regulator is examining around 20,000 public comments received on its consultation paper on the closing auction session mechanism. The proposed changes aim to address concerns over the impact of closing prices on derivative settlement. Mr. Pandey said SEBI is also reviewing regulations governing depositories and participants to simplify compliance and strengthen fraud prevention. He added that changes to clearing arrangements for certain transactions, including share buybacks and tender offers, are targeted for implementation by the end of November. Meanwhile, SEBI is also working to simplify digital onboarding for overseas investors and strengthen cybersecurity, disaster recovery and business continuity across market infrastructure institutions. Mr. Pandey said guidelines on the responsible use of artificial intelligence and machine learning will be issued shortly, with safeguards including clear accountability, data controls and human oversight. Akar, we'd like to have your opinion on this. How do these guidelines, are they aiming to have more transparency and fairness in the derivative market?
3: Yes, seems like. Yeah, definitely. I mean, the government is, the regulators are trying to, you know, make the things much better for the investors.
1: All right. जी.
0: और अभी एक कॉलर का सवाल मुझे याद आ गया और मुझे लगा कि शायद उस पर एक और चीज़ जोड़ दूँ मैं, जो एक साल के लिए निवेश की बात कर रहे थे कि एक 10 लाख रुपये अगर मुझे एक साल के लिए लगाने हैं, और आपने लास्ट में कहा कि FD, क्योंकि अभी बैंक रेट बढ़े हैं अभी, हालांकि वो देखते हैं हम ग्राहकों तक उसकी मतलब उसका असर पहुंचता कब है और कब हमें FD के बढ़े हुए रेट मिलते हैं, तब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम पैसे कहाँ रखें।
3: हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें जाएगा, क्योंकि अब आज की तारीख में जो टैक्स रेट है वो दोनों चीज़ों पे सेम है
0: जी।
3: FD का जो इंटरेस्ट है वो भी आपकी एनुअल इनकम में ही ऐड होकर टैक्स होता है, और जो लिक्विड फंड में जो आपके गेन्स होते हैं वो भी आपके एनुअल इनकम में रहता है, ऐड होकर लगता है। बट यहाँ पे जो एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक स्टेप ऊपर है, एक एडवांटेज पे है, वो ये है कि जैसे यहाँ तो केवल एक साल के

0: आती, लेकिन अगर कहीं पे होता है कि आपका कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मनी है फिक्स्ड इनकम का, जैसे कि 2-3 साल का हो गया, वहाँ पे आपको हर साल टैक्स नहीं देना होएगा। एफडी पे जो इंटरेस्ट है, भले ही आपको हर साल आपके अकाउंट में ना आए, वो खाली अक्रू हो रहा है, मैच्योरिटी पे मिलेगा आपको, तब भी हर साल टैक्स देना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप बेचेंगे, आपको केवल तभी गेंस पे टैक्स देना है।
1: तो ये फायदा तो है
0: जी
1: म्यूचुअल फंड्स में आने का।
0: बिल्कुल, वो कंपाउंडिंग आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और वहीं पे जैसे कि तब मैं उस वक्त बता रहा था कि आपको एक टाइम का कमिटमेंट नहीं देना पड़ता। जैसे कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि हमारे एक इमरजेंसी का पैसा है, कुछ लाख रुपए है जो हमने रखे, लेकिन हमको एग्जैक्टली कब यूज़ करने हमको नहीं पता। अगर हम एफडी में निवेश करते हैं तो हमको एक टाइम कमिटमेंट देनी पड़ती है, ऐसे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अगर उससे पहले उनकी आवश्यकता पड़ती है, उनको निकालते हैं, तो इंटरेस्ट रेट पे एक पेनल्टी पड़ जाती है। बट म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे पूरी लिक्विडिटी है, आप कभी भी उनको रिडीम कर सकते हैं।
1: थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन उसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: आवर नेक्स्ट कॉलर जॉइंस अस फ्रॉम मुंबई। सोमनाथ जी, सवाल पूछें।
3: हेलो, हेलो सर।
2: हाँ जी सोमनाथ जी, सवाल पूछें।
3: अभी का मार्केट कंडीशन में,
2: प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ योर रेडियो सेट। सोमनाथ जी, आपकी आवाज एको कर रही है। जी बताएं।
3: हेलो
1: जी, बताएं।
3: अभी का मार्केट कंडीशन में
1: जी, लगता है उनकी लाइन पे कुछ गड़बड़ी है, कहीं कुछ डिस्टरबेंस है, लेकिन हम इतना सुन पाए कि अभी के मार्केट कंडीशन में क्या होगा। और
0: तो सोमनाथ जी देखिए, आपका पूरा सवाल तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन अभी जितना मैं आपको बता पाऊंगा कि जो मुझे लगता है कि आप पूछना चाह रहे थे कि इस मार्केट कंडीशन में कहाँ निवेश करना चाहिए, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपके लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, मार्केट का जो सिचुएशन रहता है, ये रोज़ बदलता है, हर थोड़े दिनों में बदलता है। शॉर्ट टर्म में ये कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। जो इक्विटीज़ है, जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसका नेचर ही ऐसा है कि ये स्थिर नहीं रहता, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो और ये हमारे एक आम आदमी के कंट्रोल में भी नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में एक निवेशक के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है, और उस हिसाब से हमारा निवेश प्लान करें। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि हमारे को पैसा कब चाहिए, हमारा जो गोल है, हमारा वो गोल क्या है, हमारे को कितने सालों में चाहिए, किस पर्पज़ के लिए हम लोग निवेश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए जो लॉन्ग टर्म का है, और उस पर हमारे को डटे रहना है, उस पर स्टिक होके रहना है। बीच में घबराना नहीं है जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए, और हर थोड़े समय में साल में एक दफ़ा उसको प्लान को रिव्यू भी कर लेना चाहिए कि क्या हमारे को इस प्लान में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कि जैसे अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे थे, अगर आप रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आपने जिन स्कीम्स में निवेश किया था, क्या वो स्कीम्स अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उन्हीं में पैसा कंटिन्यू करे या ना करे, या बदलने की ज़रूरत है।
2: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम महाराष्ट्र, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी स्वागत है, आप सवाल पूछे।
4: नमस्कार मैडम
2: जी। नमस्कार
4: मैम। सर से मेरा क्वेश्चन है, अभी मेरे पास इंस्टॉलमेंट समझो 2 लाख का, मतलब किस फंड में मुझे जाना चाहिए? 1 साल के लिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो उसमें कम से कम रिस्क हो और कुछ अच्छा रिटर्न मिले, तो कुछ ऐसे फंडों के बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू।
0: गुरुनाथ जी, जो आपने मेरे को अपना होराइज़न बताया 1 लाख का, सॉरी 1 साल का, और 2 लाख का, 2 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका एक होराइज़न है वो फिक्स्ड है, आपकी जो नीड है वो फिक्स्ड है कि आपको 1 साल के बाद इस पैसे की आवश्यकता होगी। देखिए, जब भी थोड़े समय के लिए पैसे लगाना हो ना, तो हमारी जो एक नीड होती है, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये रिटर्न हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो पैसा सिक्योर रहे, जिसको हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल बोलते हैं, और साथ ही में एक ठीक ठाक, मतलब जो एक इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न है वो मिल जाए कि पैसा हमारे डिटोरिट भी ना हो।

0: श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. In Indian bullion market, gold and silver prices end on mixed note last week. Foreign portfolio investors sell equities worth over 45,000 crore rupees on stock exchanges, infuse more than 900 crore rupees through primary market in October so far, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings and geopolitical developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाएं से दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। भारतीय दूतावास ने बताया है कि रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायलों में से एक भारतीय नागरिक की कल मौत हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वे शोक संतप्त परिवार के संपर्क में हैं और शव को जल्द से जल्द भारत पहुंचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद रियाद में भारतीय दूतावास हर जरूरी कदम उठा रहा है। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में कल अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जल स्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में

0: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெற்றது. இன்னும் சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: Lead yourself to the life you deserve. Best wishes. बहुत बहुत शुभकामनाएं.
2: श्री सुनील पालीवाल सर, आज आपने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को जो संदेश दिया है और जिस तरह सरकार के प्रयासों का
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में

0: 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और देश के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूतियों के हमले में 309 घायलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इस हमले में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह उन्हें हर संभव मदद देने के लिए उनके संपर्क में है। दूतावास ने बताया कि शनिवार को हुए हमले में घायल हुए लगभग 300 लोगों में 10 भारतीय भी शामिल थे। भारतीय अधिकारी घायलों की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के संपर्क में हैं। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। नोएडा नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में कल अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंकों के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its

0: சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है।

0: हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल योजना के दूसरे चरण के पुनमपल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
0: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। दुनिया भर के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए हमले की निंदा की है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक सहित 13 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमरीकी मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि अमरीका यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के हमलों में शामिल होने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरस, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हमले की निंदा की है। पाकिस्तान, कतर, फलस्तीन, जॉर्डन और मलेशिया ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यूरोपीय संघ के प्रमुख ने नागरिकों पर हुए हमलों को जानलेवा बताया और कहा कि उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में कल अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying the foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Poormalle-Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi has also attended Golden Jubilee celebrations at Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya.

0: எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நிகழ்ச்சி கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनामल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य

0: को उसी बड़े कैनवास पर देखें, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहा मार्शल द्वीप ध्वजांकित टैंकर MT वाल्थेरा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक अज्ञात प्रक्षेप्य से टकरा गया, जिसके बाद जहाज पर आग लग गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय चालक दल के सभी 11 सदस्य सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर MT पेट्रो डॉल्फिन पर सोहर एंकरेज में ड्रोन हमला किया गया। उन्होंने कहा कि चालक दल के 9 भारतीय सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, जबकि 2 भारतीय नागरिक फिलहाल लापता हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय लापता कर्मियों का सुरक्षित पता लगाने के लिए हर संभव कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि कल रियाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्रोजेक्टाइल यात्री टर्मिनल से टकरा गया। इससे एक दिन पहले शनिवार को इसी टर्मिनल पर मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। हमले में घायल एक भारतीय यात्री की कल मौत हो गई। हुती विद्रोहियों ने इन सभी हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने बताया कि कल के नए हमले में भी कुछ लोग घायल हुए हैं। शनिवार को हुआ मिसाइल हमला ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी के अरब देशों में सबसे घातक हमला था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कपिल कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऐसी बाघी पत्थर भार पत्थर भार नैया।

खेवई खेवैया। बहुरी दया को डांड घाट पर आवे नैया। ओ

0: இனியராகும் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பண்டிட் ஓம்காரநாத் தாகூர் அவர்களின் பாட்டும் பண்டிட் சி ஆர் வியாஸ் அவர்களின் பாட்டும் நினைவாக ஃபரீதா கான் வழங்கிய கஜலும் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। केंद्रीय पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहा मार्शल द्वीप ध्वजांकित टैंकर MT वाल्थेरा हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक अज्ञात प्रक्षेप से टकरा गया, जिसके बाद जहाज पर आग लग गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि सभी 11 भारतीय

0: भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर सोहर एंकरेज में ड्रोन हमला किया गया। उन्होंने कहा कि चालक दल के 9 भारतीय सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, जबकि 2 भारतीय नागरिक लापता हैं। तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि रूस और यूक्रेन 4.5 साल से चल रहे युद्ध में एनर्जी सिसवार यानी ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में बस इतना बताया गया कि ये युद्ध विराम तुरंत लागू हो गया है और इसे न तोड़ने की चेतावनी दी गई है। रूस ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है और अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी ट्रंप के पोस्ट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying the foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees over Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai. Addressing the students, the Prime Minister highlighted India's manufacturing growth and said that the sector's expansion had created direct and indirect employment opportunities for young people.
2: Aaj component se technology aur finished products ka har rajya mein kendra sarkar product chain ko majboot kar rahi hai aur inhi koshishon ka parinam hai. आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
1: The Supreme Court directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to their normal schedule and that the internet services remain uninterrupted, subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties, issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of its directions. The Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused. India called out Office of the High Commissioner for Human Rights, OHCHR, for its double standards and approach of extreme selectivity when it comes to public positions, while rejecting the organization's renounce on Saturday's events in New Delhi.

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மனோஜ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूतियों के हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। हमले में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो उन्हें हर जरूरी मदद देने के लिए उनके संपर्क में है। दूतावास

0: ने बताया कि शनिवार को हुए हमले में घायल हुए लगभग 300 लोगों में 10 भारतीय भी शामिल थे। भारतीय अधिकारी घायलों की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के संपर्क में है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि रूस और यूक्रेन 4.5 साल से चल रहे युद्ध में एनर्जी सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये युद्ध विराम तुरंत लागू हो गया है और इसे न तोड़ने की चेतावनी दी गई है। रूस ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है और अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी ट्रंप के पोस्ट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of developmental projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai. Addressing the students, the Prime Minister highlighted India's manufacturing growth and said that the sector's expansion had created direct and indirect employment opportunities for young people.
2: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है।
1: The Supreme Court directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to their normal schedule and that internet services remain uninterrupted subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties. Issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of its directions, the Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused. An Indian national injured in the attack on Riyadh King Khalid International Airport in Saudi Arabia has died yesterday. In a social media post, Indian Embassy in Riyadh expressed its heartfelt condolences to the bereaved family and said it is in touch with them to provide all necessary assistance. 10 Indians were among around 300 people injured in the attack that took place on Saturday. External Affairs Minister S. Jaishankar said that Indian Embassy in Riyadh is taking all necessary steps following the attack on Riyadh Airport. In view of the current situation, Indian Embassy in Riyadh reiterated its earlier advisory for the Indian nationals in Saudi Arabia to remain alert and vigilant and stay indoors as necessary. The embassy has urged Indian nationals to refrain from circulating or reposting any videos or news related to the ongoing events. Embassy officials have visited all hospitals where Indian nationals injured in the attack have been admitted. In a social media post, the embassy informed that 3 Indians are in